तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो के चले, फिल्म शिकार में से निकाल लेने के दिन। अख्तन से अस्तक का ये गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में हमने आपको सुनाए हैं। चलिए, जानी दुश्मन वो भूत अख्तक फिल्म आपने अवश्य देखे होंगे, संजीव कुमार का। जानी दुश्मन में से निकाल रहे हैं जी हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। लता जी चलिए आपको सुना रही है इस तरह से फिल्म जानी दुश्मन, निगेटिव नई खनन से 79 का ये गीत।

जी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर आपको सुनाए हैं नेक नसीब का ये गीत फिल्म जानी दुश्मन में से निकाल कर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है

रमा रामा गजब हुई गवारे। लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो जी हाँ, आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। आप जहाँ भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं।

तुम ही तो हो जिसका सपना मैंने देखा था। ये शानदार गीत चला ओवरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। तो अगर आप भी हैं, मैं भी हूँ, मैं चला रहा हूँ, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ।

महेंद्र कपूर जी और लता जी, ये दोनों मिल के बड़ा आदमी से में से निकाल कर ये गीत हम आपको सुनाएं। और साज है चित्रगुप्त जी का, चित्रगुप्त के साज पर ये गीत पेश हुआ। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, आप भी हैं और मैं भी, जैसे मैंने कहा। तो क्या ख्याल है कि हम आपको ये धमाकेदार गीत सुनाएं।

नथनिया हाले तो बड़ा मजा होए, ये चटपटा चुटकुला गीत हम आपको सुनाए हैं फार्म हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं, ये देखते हैं, ये लॉफिन टोक्यो का है। जी हाँ, लॉफिन टोक्यो, इस तरह से

फिल्म लव इन टोक्यो में से निकाल कर ये प्यारा गीत हम आपको सुनाए हैं ओवर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए ये गीत भी आपको सुना देता हूँ, एवरग्रीन किशोर कुमार। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर

जाने मन जाने मन एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाएं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर हमने पेश की। आप भी हैं और मैं भी हूँ। अच्छा, तो आप दोनों हम दोनों हैं, आप श्रोताओं, तो क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये गीत सुनाऊं? ये गीत के बोल थोड़ा, इसे सुनिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सुन लीजिए।

फिल्म गैम्बलर में से निकाले हैं निगत एन से इवन तक का, ये देवानंद का गैम्बलर है, ग्रेट गैम्बलर नहीं, गैम्बलर निगत एन से इवन तक का ये गीत लता जी की आवाज़ में और एफ एम ग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं, जी हाँ, म्यूजिक डायरेक्टर आनंद राज आनंद

तो लीजिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और ये गीत के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, बस आप इसे सुनिए और निर्णय कीजिए क्या कैसा गीत है। इस तरह से आ रहा है।

सुरेश वाधिकर जी और लता जी ये शानदार द्वैत आपको सुनाए हैं, जबकि आप सुन रहे हैं और मैं चला रहा हूँ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो दनहा शहर से। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये गीत है, हाँ सुनिए, रोना लैला जी, इस तरह से।

अरे दुनिया के वीरां पाओगे जब हम नहीं होंगे, ये तो बात सच है। ऐसा होता है ज़िंदगी में। और हमने ये गीत पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो कार्यक्रम में रोना लैला जी की आवाज़ में। तो चलिए रोना लैला जी के बाद हम आपको सुना रहे हैं ये आवाज़, आपके लिए भी एक बहुत जानी पहचानी आवाज़ है। फिल्म फिल्म फिल्म निका में से निकाले हैं

वाह क्या बात है, फंसा भी है जमा जमा। सलमा आगा की आवाज़ में हम आपको सुनाएं ओवर फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

दिल ने ये क्या सुन लिया, आंखों आंखों में तूने ये क्या कहा। ओवरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश किए। तो चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, जी हाँ, चलिए हम आपको सुनाते हैं ये धमाकेदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

डाकू पे डका डाले तो बड़ा मजा हो, इस शमशाद बेगम की आवाज में आपको सुनाया गया ओवर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए शमशाद बेगम जी के बाद हम आपको सुनाते हैं रफी साहब की आवाज।

चले भला।

0: समझ में आया,
1: तो हम भी करते हैं प्यार समझ में आया।
2: फिल्म कॉलेज गर्ल 1951 रफ़ी साहब की आवाज़ में आपको सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश की। जी हाँ, तो क्या ख्याल है रफ़ी साहब के बाद हम आपको ये सुनाते हैं। हाँ, निगती द्रीन तख्त 1951 से सीधे चलते हैं द्रीन तख्त। जानी पहचानी गीत है, जानी पहचानी आवाज़ है, जानी पहचानी म्यूजिक डायरेक्टर है, तो सुन लीजिए।

अगर तुम ना होते हमें जीने की चाहत ना होती। एवरग्रीन किशोर कुमार जी और लता जी निकित इंद्रियन तख्त का ये फिल्म है, हमने पेश की ओवर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। फिल्म तो टाइटल सॉन्ग है ये है अगर तुम ना होते निकित इंद्रियन तख्त का। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, अगर आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर हम आपको ये सुनाते हैं। जी हाँ सुनिए, बहुत पुरानी गीत है, उतनी पुरानी तो नहीं है लेकिन फिर भी है।

क्या बात है, बहुत पुरानी गीत है, उतनी पुरानी भी नहीं है। आपको सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा, हमने पेश की ये शानदार गीत। चलो यहाँ से हम पेश करते हैं, जी हाँ, चलिए आपका स्वागत करते हुए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हम आपको सुनाते हैं ये गीत। जी हाँ, कहाँ गया मेरा गीत, और वो ये है इस तरह से।

0: से तौबा।
1: हाँ वाह क्या बात है, आपने शायद शब्द सुने होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अगर ये शब्द आप नहीं सुने होंगे तो मुकेश जी जो है वो प्यार करता है लेकिन रफ़ी साहब प्यार के ख़िलाफ़ है, बस यही सवाल और जवाब इन लोगों में था। मुकेश जी प्यार कर रहा था और रफ़ी साहब उसका ख़िलाफ़ था। ये गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चला रहे हैं, ये जी हाँ ये भी एक जानी पहचानी गीत, लंबा चौड़ा गीत है, 6.5 मिनट का, तो सुनिए ये गीत कैसा है।

तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में आया है, आप तो ऐसे ना थे, फिल्म का नाम है और हमने पेश की ओवरफाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए अगला गीत। जी हाँ, अगला गीत है मैती मुकेश, मैती मुकेश द हार्ट ट्रब ऑफ मिलियंस।

लता जी की आवाज में ये शानदार गीत आपको सुनाए ऊपर फावनी रेडियो फिल्म लुटेरा में से निकाल कर। लेकिन ये पता नहीं कि उन दिनों या पुराने ज़माने में भारत में सही पिरात थे या नहीं, यानी समुद्री डाकू थे या नहीं, पता नहीं। समुद्री डाकू का ये फिल्म है लुटेरा, जो इंडिया ने बनाए कभी और हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलो देख

मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए, फिल्म दिल ने पुकारा में से ही निकाल कर हमने पेश की नेगेटिव सेशन सेस्त का ये गीत, और हमने पेश की ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। और चलिए अगला नंबर हम पेश करने वाले हैं, तो क्या ख्याल है? जी हाँ, आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो चलो सुनते हैं। फिल्म जंगली में से निकाले हैं शंकर जय किशन के साथ पर ये शर्मिला टैगोर और शमी कपूर का कमाल है।

दीवाना हुआ बादल, ये शानदार गीत हमने पेश की। लेकिन शुरू में हमने कहा था फिल्म जंगली, लेकिन फिल्म जंगली का नहीं है, लेकिन ये है फिल्म कश्मीर की कली की। लेकिन बीच में हम रोकना नहीं चाहते थे, इसलिए नहीं कहा। फिल्म कश्मीर की कली में से निकाल कर ओपन एयर के साज पर नहीं था ये, और हमने पेश की ओ फरफा हो हिंदुस्तानी रेडियो।

एक बात पूछूं या बोलो, लता जी और रफ़ी साहब मिलके आपको सुनाए फिल्म कठपुतली में से निकाल कर निकले एने सही फिल्म तक का ये गीत कल्याण जी आनंद जी के साथ पर हमने आपको सुनाया है। ये अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है? चलो हम ये आपको सुनाते हैं, इस तरह से आ रहा है।

हाँ जी, उदित नारायण और साथी मिलके आपको सुनाएं ये शानदार गीत हमने पेश की मोहब्बत में से निकाल कर। जी हाँ, यतीन ललित के साज पर हमने पेश की हो फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है, ये है, इस तरह से आ रहा है।

हाँ जी क्या बात है, एवरग्रीन जी नहीं, द मैन विद द गोल्डन वॉइस, द मैन विद द गोल्डन वॉइस आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाहोन हिंदुस्तान। तो अगर आप तत्पर हैं, आपका हृदय से स्वागत है, आप जहाँ भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे, जिस देश में भी होंगे और कार्यक्रम फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो का सुन रहे हैं और वीवी द्वारा वहाँ पर और इंटरनेट द्वारा आपका हृदय से स्वागत है। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत।

फिल्म हंसते जख्म में से हमने निकाले हैं, तुम जो मिल गए हो। और रफ़ी लता जी की आवाज़ में हम आपको सुनाएं ये गीत उफ़ाहोन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए, क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ? जी हाँ, सुन लीजिएगा, क्योंकि ये गीत जहाँ तक मेरा ख्याल है बहुत दिन हुए मैंने भी नहीं सुने हैं। फिल्म आत्माराम ने से निकाल रहे हैं, और रफ़ी साहब की आवाज़, जी नहीं, लता जी की आवाज़ में हम पेश करने वाले हैं। इसे ध्यान से सुनिए, इस गीत में बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं, क्या ख्याल है? चलो सुनते हैं। थोड़ी देर ध्यान से सुनिए ये गीत।

0: तुम्हारे बिन गुजारे हैं कई दिन अब ना गुजरेंगे। लता जी, मैं तो भूल ही गया था कि रफ़ी की आवाज़ भी इसमें है। रफ़ी साहब और लता जी मिलके आपको ये शानदार द्वैत सुनाएं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जहाँ तक मेरा ख्याल है बहुत दिनों बाद हमने ये गीत सुने हैं, 7-4-5 साल हो गया होगा, और शायद हमारे सहयोगी ने आपको सुनाया होगा, तो मेरा बदनसीबी है। बहरहाल ये गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ।
1: दुनिया में जो ले हिम्मत से काम,
0: महेंद्र कपूर जी।

आपने सुने महेंद्र कपूर जी आपको सुनाए कि बड़ा आदमी कौन है, हमने निकाल कर आपको सुनाए इस तरह से फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। आपको तो ये गीत हमें यही बताता है कि सूट बूट पहन लेने से, टाई यानी जैकेट के ऊपर एक दास बांध लेने से, महंगा जैकेट पहनकर या कुछ सोने का चेन लटका कर और बड़े गाड़ी में चलना, 70-80 हज़ार का गाड़ी में चलना, ये वो बड़ा आदमी नहीं है। बड़ा आदमी वो है जो दिल से किसी को चाहे, उनका दिल बड़ा है, पैसा बड़ा नहीं। तो यही गीत महेंद्र कपूर जी आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो हमने पेश की। चलिए अगला गीत इस तरह से आ रहा है, ये तो प्यार करने वाले सिखाते हैं कि कैसे प्यार किया।

0: जी फिल्म उपासना में से निकाले हैं। हाँ आओ तुम्हें मैं प्यार सिखा दूँ। लता जी और रफ़ी की आवाज़ में आपको सुनाएगा निगती एन सैफन तख। 1971 का ये गीत हमने पेश किया ओवर फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।
1: शांति सांसारिक साधनों में नहीं, अपने सत्यता और सत्य स्वरूप को पहचानने में है।

मित्रों, जो बातें बतलाने जा रहा हूँ हमेशा की तरह ध्यान पूर्वक श्रवण करें और जीवन में उतारिए। ज्ञान इसीलिए बांटा जाता है कि लोग उसे सुनकर अपने जीवन में उतारें और न वैसे ही सुन करके साइड कर दे। नहीं मित्रों, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो जहाँ बारिश ना हो मित्रों, जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती है, और जहाँ संस्कार ना हो, जहाँ संस्कार ना हो वहाँ नस्ल भी खराब हो जाती है। हाँ, जो लोग ये कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों के गिनती में आपका नाम ही नहीं है मित्रों। नहीं है, कैसे वक्त नहीं है। मैं प्रवचन दे रहा था, कहीं काफ़ी लोग बैठे हुए थे, तो लोग के हमने कहा कि दोस्तों तुम लोग समय निकाल कर प्रभु के लिए जरूर कम से कम आधा घंटा समय निकालो, एक घंटे का एक मिनट निकालो तो 24 घंटे में 24 मिनट हो जाएगा। तो लोग खड़ा होकर बोले, गुरु जी कहाँ से लाई समय हम लोग हैं। तो इसे सही समझिए। तो मैंने फ़ोन लगाया परमात्मा को, का नंबर मेरे पास है, लगाया मोबाइल फ़ोन, तो उसने उठाया बोले, क्या है प्यारे। हम बोले, प्रभु हमारी जनता को कुछ समय हो तो और दे दो, क्योंकि यहाँ पे सभी को तंगी है, समय नहीं है। तो परमात्मा हमसे बोले, बेटा मेरे पास 24 घंटा है और आप लोगों की भी 24 घंटा है। मैं 24 घंटे में पूरी दुनिया को, सारी दुनिया, सारा संसार को चलाता हूँ और कभी समय कम ना हुए। और तुम लोग को भी 24 घंटा है और हमेशा समय कम है। तो मैंने कहा, प्रभु तो क्या प्रॉब्लम है। बोले, तुम का प्लानिंग ठीक नहीं है, अपने समय का प्लानिंग ठीक नहीं करते हो, जाओ सुधारो अपने प्लानिंग को, तुम काफ़ी समय बचेगा। तो मित्रों, समय निकालिए अपने परमात्मा के लिए, और ये नहीं कहे कि वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। असल में उनके खास रिश्तों के गिनती में आपका नाम ही नहीं हो जाएगा मित्रों। तो बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, स्वाभिमान होना जरूरी है मित्रों, वरना लोग वहाँ भी आपको दबाने की कोशिश करेंगे। दमोदर क्यों, हाँ जहाँ आपका अधिकार है वहाँ दबाने की कोशिश करेंगे लोग, ऐसे है आज के ज़माना। आप भी यही काम करते हो, अगर नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो सही रूप से जीते रहो मित्रों। सुनिए, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है अन्य पुरुष भी, अन्य लोग भी वैसा ही आचरण करता है। वह जो कुछ प्रमाण देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के पद चिन्हों पर अपने रास्ते चुनता है। आप भी करते होंगे शायद ज्ञानियों के बात लेकर, पता नहीं, मैं जरूर कीजिए मित्रों। ज्ञानियों के बात लेकर अपने जीवन में अवश्य उतारिए, अन्यथा जीवन क्या है।

मित्रों, सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हमेशा अच्छा रहना चाहिए, अच्छा मनीरी है। और जो मनुष्य ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते हैं, वे अज्ञानी मनुष्य जीवन में कभी भी सुख शांति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे आप, सुख शांति है जीवन में तो ठीक, अगर नहीं है तो थोड़ा सोच विचार करो कि कहाँ गड़बड़ी है मित्रों। और ऐसे मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है, उल्टा सोचते हैं। आप तो उल्टा नहीं सोचते हो ना, वो लौकिक और परलौकिक सब प्रकार के सुख साधनों को विपरीत ही समझने लगते हैं। इसके फलस्वरूप उनका इस लोक में और परलोक में पतन हो जाता है, गड़बड़ी होवत है, पतन हो जाता है। और वे अपनी वर्तमान स्थिति से भी भ्रष्ट हो जाते हैं। आप तो ऐसे नहीं हो ना, सोच विचार करो। और मरने के बाद वो

अपनी योनियों में नहीं जन्म लेना मित्रों, सुधारो जीवन को। हम ये नहीं कह रहे कि आप गड़बड़ जी रहे, मगर कहीं कहीं गलती हो तो उसे सुधारो, या घोर नरक में पड़कर भयानक यातनाएं भोगनी पड़ती है। आई दायो फांसी मी माती यो फांसी खा देंक।

दोस्तों, भजन के द्वारा आपको काफ़ी ज्ञान मिलता है ना, और यही हमेशा हम बोलते रहते हैं, ना सोचना कि बड़ा सुंदर बड़ा मोई मोई, उसे जीवन में उतारो। जब आप भोजन तैयार करते हो बहुत स्वादिष्ट माह के खुशबू, तो आप कहते हैं बड़ा लेकर स्मेल हुए अश्मेर स्वीती, तो ऐसे पेट ना भरे, उसे खाओ। पेट में जाए तब स्वाद मिले, तब आप ढकार मारो घड़ाम से, बोले बहुत मीठा बहुत स्वादिष्ट रहा। इसी तरह ज्ञान भी अन्न है, यह आध्यात्मिक अन्न है मित्रों, इसे आप ग्रहण करो, जीवन में उतारो, तभी कुछ न कुछ प्राप्त होंगे आपको। और जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विपरीत स्थितियों में भी अपने धर्म के मार्ग पर अधिक रहता है, और उसके कारण अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है मित्रों, तो वह मृत्यु भी उसके लिए परम कल्याणकारक बन जाती है। बुद्धि ठीक तरह से उपयोग करो, कर्म ठीक करो, भले ही पापी हो मगर बाद में कर्म ठीक कर तो करो, सब ठीक हो जाएगा मित्रों, और उस मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आप सोचेंगे कैसे है ना, अभी बहुत लंबी बातें बताएंगे तो आप समझ पाओगे। जेहल मिलल है 50 बरिस के, अपने को सुधार ले लो जेहल में, तो खरासी मिले है, तो बोले अच्छा 5 बरिस में तू चल जा बाहर, तू बहुत अच्छा आदमी बाटे। ऐसे ही ये हुआ है, बड़ा पापी हो सुधार कर लो, तो भगवान बोले अच्छा मैं लुकू दो डे फिंगर हैं। तो जब तक तुम अपने से नहीं हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है मित्रों। आपका भविष्य आपके हाथ में है, और कमजोर तुम नहीं मित्रों, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। हम भजन गाए हैं कि दिन रात बदलते हैं हालात बदल, सुने हैं ना आपने, उसे सुनो ध्यान, भजन का नाम है दिन रात बदलते हैं, सुनिए। और तो कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त होता है, और वक्त सबका बदलता है, तुम बस अपना कर्म करते जाओ, सही कर्म करते जाओ मित्रों। और नोगो तू लाओ लाओ सानी, नोगो तू लाओ लाओ सानी, उसी फांसी।

दोस्तों, जिसने संकट कभी नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा, और जो दूसरों को तकलीफ को समझते हैं, दूसरे के तकलीफ को आप समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। मित्रों, तो आप जन्म दोबारा नहीं लोगे, बड़ा अच्छी बात है। तो धरती पर सब खलास हो जाएगा मनुष्य, तो आप धरती पर आना चाहते हो या नहीं, ये आपके हाथ में है। मैंने बतलाया अभी आपको कि कब धरती पर नहीं आएंगे आप। मित्रों, तो किसी को कुछ देकर, सुनिए ये भी एक उपाय है, किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, ना मीना हेयर कल हम दे ली है, तू कह देने वाला है, है? ये मारन इंस्ट्रूमेंट। मित्रों, तो किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्मों का कर्ज चुका रहे हैं आप, कर्ज चुका रहे हैं। मित्रों, ये भी तो है ना। तो घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं, सब गायब हो जाए तोरबी की फांसी से, अहंकार से। मित्रों, और विश्वास ना हो, ध्यान करना, तू घमंडी है ना, तो विश्वास ना हो तो रावण को और कंस को देख लो। आप तो नहीं रावण हो या कंस हो, नहीं, हम ये आशा नहीं रखते हैं। मित्रों, आप अंश और रावण कभी हो ही नहीं सकते हो, अनोखा और हो सके दम ऊंचाई मार हुई तो, तोड़ तोड़ी है, तू जाना दम ऊंचाई मार हुई तो।

साथियों, किसी पर विश्वास करना हो, सुनिए, किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, मगर उनकी हरकतों पर, संस्कार पर, मनीरी पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से मित्रों जिंदगी और भी आसान हो जाती है, आसान हो जाती है। मगर आप तो झुकना नहीं चाहते हो, हैं? झुकिए, आपके बात नहीं बतला रहा हूँ, आपके पड़ोस के जो बगल में खड़ा है उनके बात बतला रहा हूँ मित्रों। और जो मनुष्य, ध्यान करना, जो मनुष्य जान लेता है वह जन्म मरने के बंधनों से मुक्त हो जाता है मित्रों, मुक्त हो जाता है। आप तो मुक्त हो जाओगे ना, हाँ। और जो मनुष्य भगवद गीता को पढ़कर, ध्यान करना, बहुत लोग हैं ये, जो मनुष्य भगवद गीता को पढ़कर अमल करता है उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। बहुत लोग पढ़ते हैं भागवत गीता मगर उतारते नहीं हैं, कुछ कुछ लोग हैं, और बाकी तो अकड़ के चलते, मीना लेरी मांग, मीना साबी मांग, दोंदर अपमान है। तो जो भाग्य में है मित्रों, जो भाग्य में है ना, वो भाग कर आएगा, आएगा चाहे जैसे हुकू बनाए के रोमाइन लेके आएगा तुम्हारे पास। और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा, भाग जाएगा। जैसे कुनकुनी बकरा बोले मैना में सहास, मतलब हम भागत हैं, जात हैं। तो जो भाग्य में वो मिलेगा, जो भाग्य में नहीं है तो का लड़ाई झगड़ा, का फेतफेती करत बाटो मित्रों। आराम से रहो, संतुष्ट करो और आगे देखते रहो भगवान तुम्हारे लिए क्या करेगा, क्या रखे हैं पैतों में मित्रों, भरोसा करो।

कि विश्वास असंभव को संभव बना देता है, विश्वास संभव को असंभव, असंभव को विश्वास असंभव को संभव बना देता है।

गीत में गाकर सुना दे कि जब से हो गए हैं यंग, हाँ आप जवान हो जाएंगे तो जरूर से ऐसा ऐसा दर्द दिल में समाएगा। और कहता है कि अच्छे के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए ही होता है। अगर इसे आप ठंडे दिमाग से सोचोगे तो आप जरूर ये मानेंगे कि बात सही है।

मेरा दिल, हाय मेरा दिल फिल्म का नाम है मेरे प्यारे सुनने वालों। हाय मेरा दिल फिल्म का नाम 1968 के ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है। 1968 कितने बीते हुए समय लग रहा ना, और वाकई में समय बहुत जल्दी से बीत रहा है। कहते हैं कि गिरने के बाद उठना ही असली जीत है मेरे प्यारे सुनने वालों। हार से डरने वाले लोग कभी जीत का स्वाद नहीं रखते।

0: बाद। दोस्तों, मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा शरीर के किस अंग से बाहर निकलती है, पुरुषों की आत्मा किस छिद्र से निकलती है और स्त्री की आत्मा किस छिद्र से निकलती है, पापी और पुण्यवान व्यक्तियों की आत्मा किन किन छिद्रों से बाहर निकलती है, इस विषय में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। इन पापी आत्माओं को अगला जन्म कौन सा मिलता है, इसका भी वर्णन भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया है। गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण जैसे ग्रंथ हमें बड़े रोचक लेकिन गंभीर अंदाज में समझाते हैं कि आत्मा कैसी होती है, शरीर में कहाँ रहती है, मृत्यु के वक्त क्या होता है, आत्मा शरीर से कैसे निकलती है और पाप पुण्य के हिसाब से आत्मा की आगे की यात्रा कैसी होती है। तो चलिए आपको गरुड़ पुराण का संपूर्ण ज्ञान विस्तार से समझाते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूले और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखे। आत्मा शरीर में कहाँ और कैसी होती है? शास्त्रों के अनुसार आत्मा हर जीव के हृदय में एक सूक्ष्म रूप में निवास करती है। ये आत्मा परमात्मा का अंश है, चेतना का वो दिव्य कण जो हमारे पूरे शरीर को जीवन देता है। शरीर तो पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना नाशवान पदार्थ है, लेकिन आत्मा अमर है, अविनाशी है। आत्मा का कोई रूप रंग नहीं, पर इसे एक चमकते हुए छोटे प्रकाश की तरह समझ सकते हैं। गरुड़ पुराण में तो कहा गया है कि यमदूत जब आत्मा को निकालते हैं तब वो अंगूठे के आकार की सूक्ष्म पुरुषाकृति होती है, यानी आत्मा इंसान के सूक्ष्म शरीर के रूप में होती है। बिल्कुल मानो आपके शरीर का नन्हा प्रतिरूप जो अंगूठे जितना छोटा होता है और जिसे सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। यही आत्मा हमारे होने का वास्तविक मैं है, जो न कभी मरती है न जलती है, बस एक शरीर से निकलकर फिर अगले गंतव्य की ओर चली जाती है। दोस्तों, मृत्यु के समय क्या होता है? जब किसी स्त्री की मृत्यु का समय आता है तो शरीर में कई बदलाव शुरू हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जैसे जैसे अंत निकट आता है उसके जीवन दायु प्राण डगमगाने लगते हैं, सांस उखड़ने लगती है, खांसी और बलगम से नलिकाएं अवरुद्ध हो जाती हैं और आंखें उलड़ने लगती हैं, शरीर बिल्कुल निर्जीव सा निश्चेष्ट होने लगता है, मानो आत्मा की पकड़ ढीली पड़ रही हो। कई बार मरने वाले की जीभ से झाग निकलने लगता है, मुंह लार से भर जाता है और वो बेहोशी की हालत में चला जाता है। गरुड़ पुराण भयावह तुलना करता है कि प्राण निकलते समय मनुष्य को ऐसा दर्द महसूस होता है जैसे 100 बिच्छुओं ने एक साथ टंक मारा हो। सोचिए जरा कितनी तीव्र पीड़ा। मृत्यु का क्षण इतना यातनामय होता है कि वो एक पल नहीं बल्कि युगों के बराबर लंबा महसूस होने लगता है। कई पापी आत्माएं तो असह्य डर और दर्द से अपने मल मूत्र तक छोड़ देती हैं। शास्त्र कहते हैं ये सब पिछले कर्मों के कारण है। जिसने जीवन भर अधर्म और पाप किए हों उसके लिए मौत का स्वाद बहुत कड़वा और भयावह होता है, लेकिन जिसने धर्म पूर्वक जीवन जिया हो उसकी मृत्यु अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण ढंग से हो सकती है। पापी के प्राण हरने कौन आता है? गरुड़ पुराण वर्णन करता है कि अंतिम क्षणों में सिर्फ मरने वाली को एक दिव्य दृश्य दिखता है। आसपास रोते परिवारजन दिखाई दे सकते हैं, पर साथ ही यमराज के दूतों का आगमन भी होने लगता है। ये यमदूत बड़े भयंकर रूप वाले होते हैं, काले डरावने चेहरे, सिर पर खड़े रोंगटे, लाल जलती आंखें, हाथों में फंदा और मूठ वाले डंडे। उनके दांत भालों जैसे नोकीले हैं, लंबे नख हैं और रूप इतना भयानक कि उन्हें देखकर ही मरते हुए का हृदय दहल जाता है। गरुड़ पुराण बताता है कि इन यमदूतों को देखकर प्राणी भय के मारे चिल्लाने लगता है, उसका हृदय तेजी से कांपने लगता है और रोम रोम सिहर उठता है। यमदूत पापी आत्मा के पास आकर कोई नम्रता नहीं दिखाते, वे क्रोध में गरजते हुए कहते हैं,
1: अरे पापी चल, आज तेरा समय पूरा हुआ, तुझे हम यमराज के पास लेकर जा रहे हैं।
0: मरने वाला अपने रोते परिवार को देखकर विलाप करता है, पर यमदूत उसको जरा भी मोहलत नहीं देते। वे लोहे के फंदे से उसका गला कसकर बांध देते हैं और जबरन आत्मा को शरीर से घसीटने लगते हैं। आत्मा का बाहर निकलना बेहद दर्दनाक होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि पापी की आत्मा को कान, नाक, आंखें आदि जिस भी छेद से घसीटना पड़े ये दूत बलपूर्वक खींचते हैं और उस दौरान आत्मा चिल्लाती हुई शरीर से अलग की जाती है। वो आत्मा अपने ही पुराने शरीर को अंतिम बार व्याकुल नजरों से देखती है जब यमदूत उसे दूर ले जाने लगते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं आत्मा किस अंग या छिद्र से शरीर छोड़ती है। ये सवाल बड़ा रोचक है। आत्मा आखिर शरीर से निकलती कहाँ से है? हमारे शरीर में कुल 9 प्रमुख द्वार या छिद्र माने गए हैं। 2 आँखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह, ये 7 ऊपरी द्वार हुए और 2 निचले द्वार, मल द्वार, गुदा और मूत्रेंद्रियो जननेन्द्रिया। कुछ मतों में सिर के ऊपर सहस्रार या ब्रह्म रंध्र को 10वां द्वार भी कहा गया है, पर शास्त्रों में प्रायः 9 द्वार की ही बात आती है। आत्मा इन द्वारों में से किसी एक से निकल सकती है, मगर कौन से छिद्र से निकलेगी ये निर्भर करता है मरने वाले के कर्मों पर। गरुड़ पुराण का मत स्पष्ट है, यदि आत्मा पुण्यात्मा है, अच्छे कर्मों वाली है, तो वो शरीर के ऊपरी ऊर्ध्व द्वारों से प्रस्थान करेगी और यदि पापी है तो निचले छिद्रों से। पुण्यवान लोगों की आत्मा प्रायः सिर के ऊपर स्थित द्वार ब्रह्मरंध्र या मुंह आंख नाक जैसे ऊर्ध्व छिद्रों से निकलती है। इसे शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है आत्मा की गति ऊपर ऊर्ध्व लोकों की ओर होगी, दिव्य मार्ग देव यान से जाएगी। विशेषकर जो आध्यात्मिक साधना में पारंगत हैं, योगी हैं या परमात्म भक्त हैं, उनके सहस्रार से आत्मा निकलकर परम लोक की ओर जाती है। माना जाता है कि यह मुक्ति का मार्ग है। इसके विपरीत पापी आत्माएं प्राण छोड़ती हैं तो निम्न द्वार से उनका जीवन निकलता है। गरुड़ पुराण कहता है कि पापी के प्राण मल मूत्र के रास्ते नीचे निकल जाते हैं। आत्मा अगर गुदा द्वार या जननेन्द्रिय जैसे निचले छिद्र से निकले तो इसे अत्यंत अशुभ माना जाता है। ये दर्शाता है कि आत्मा अधोगति नीचे लोकों की ओर जा रही है। ऐसे प्राणी की आत्मा मर कर सीधे यमलोक, प्रेतलोक या नरकों की ओर जाएगी। साफ शब्दों में ऊपरी द्वार से आत्मा का निकलना पुण्य का फल है और निचले द्वार से निकलना पाप का फल। यही कारण है कि हमारे शास्त्र मृत्यु के समय भगवान के नाम स्मरण, गंगा जल, तुलसी दल आदि देने को कहते हैं, ताकि अंत समय शुभ हो और आत्मा ऊर्ध्व मार्ग से शांति पूर्वक निकले। अब खास तौर पर अगर स्त्री की बात करें, स्त्री की आत्मा भी यही नियम मानकर शरीर से निकलती है। पुण्यवती स्त्री जिसकी जिंदगी धर्म पूर्ण रही हो, सेवा, सत्य, संयम से भरी, उसकी आत्मा ऊपरी छिद्र, मस्तक, नेत्र, नासिका या मुख में से किसी से प्रस्थान करेगी। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि ऐसी आत्मा के निकलते वक्त चेहरे पर एक शांत चमक दिखाई देती है, शरीर बिना ज्यादा तड़पे शांत हो जाता है। दूसरी ओर पापिनी स्त्री जिसने जीवन भर अधर्म, अत्याचार, अनैतिक कर्म किए हो, उसकी आत्मा अक्सर नीचे वाले रंध्रों से बाहर जाती है, जैसे गुप्तांग या गुदा मार्ग से। ये उसके भारी पापों का संकेत है कि मृत्यु भी कष्टदायी हुई और आत्मा अधोलोक को चली। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, पापी के प्राण नीचे के द्वार से निकलते हैं। मतलब यही कि स्त्री हो या पुरुष, पाप पुण्य के अनुसार आत्मा के निकलने का मार्ग तय होता है। मृत्यु के बाद आत्मा की गति कैसी होती है? शरीर छूटने के बाद आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। अब आत्मा अकेली है, न कोई रिश्तेदार साथ जाता है, न दौलत, न शरीर, केवल उसके अच्छे बुरे कर्म साथ हैं, जिनके आधार पर उसे आगे का मार्ग मिलता है। हिंदू धर्म में 2 मुख्य मार्गों का वर्णन मिलता है, देवयान देवों का मार्ग और पितृयान पितरों का मार्ग। इसका मतलब सरल भाषा में, जो आत्माएं आध्यात्मिक रूप से उन्नत हैं, जिनका जीवन पवित्र रहा, वे देवलोक या ईश्वर के धाम की ओर जाने वाले मार्ग पर चलती हैं, और बाकी आम आत्माएं पितृलोक या यमलोक जाने वाले मार्ग से गुजरती हैं, जहां उनके कर्मों का फल नरक या स्वर्ग निर्धारित होता है। यमलोक की यात्रा पितृयान मार्ग। अधिकांश आत्माओं को मृत्यु के बाद यमदूत यमराज की सभा यमपुरी में ले जाते हैं। जैसा हमने देखा, पापियों को क्रूर यमदूत घसीटते हुए ले जाते हैं। ये यात्रा गरुड़ पुराण में काफी लंबी बताई गई है, लगभग 86,000 योजन, यानी बहुत लंबा रास्ता पार कर आत्मा यमराज के शहर पहुंचती है। रास्ते में 16 भयानक नगर आते हैं, जहां आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग कष्ट और मनोव्यथा झेलती है। जब हम उदाहरण के लिए कहीं तपती रेत की सड़क है, जहां प्यास से व्याकुल आत्मा नंगे पैर दौड़ती है, तो कहीं आग के जंगल की लपटे हैं, कहीं बर्फ जैसी ठंड। एक भयानक नदी आती है, वैतरणी नदी, जो रक्त पीप और गंदगी से भरी है, जिसमें मगरमच्छ सांप जैसे जीव हैं। जिसने जीवन में गोदान किया हो या पुण्य किए हो, उसे इस वैतरणी को पार कराने नाव या गाय की पूंछ मिल जाती है, पर जो पापी हो वो इसमें डूबकर यातना पाता हुआ पार होता है। आत्मा को प्रत्येक क्षण एहसास होता चलता है कि उसने जीवन में क्या पाप किए। यमदूत रास्ते भर उसे कोड़े मारते हैं, धक्के देते हैं और डराते हैं। आत्मा भूखी प्यासी थकी हुई बेबस सी आगे बढ़ती है। उसे अपने परिवार की याद सताती है, पर अब पछतावा करने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। लगभग 47 दिन या कुछ हफ्तों का समय इस यात्रा में लग जाता है। भिन्न ग्रंथों में अलग वर्णन है। अंत में यमपुरी यमराज की नगरी आ जाती है, जहां यमराज को दक्षिण दिशा का फाटक पापी आत्माओं के लिए खोलने को कहा जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि यमपुरी के चार द्वार हैं, पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिणा। दक्षिण द्वार से वे आत्माएं लाई जाती हैं जिन्होंने जीवन भर पाप और अधर्म किए यमराज के दरबार में पेश होने के लिए। वहां चित्रगुप्त उनके कर्मों का लेखा पढ़कर सुनाते हैं और यमराज उनके दंड या पुरस्कार का फैसला करते हैं। फिर उन आत्माओं को उनके कर्म अनुसार नरक भेजा जाता है, या कुछ को थोड़े बहुत पुण्य हो तो कहीं अल्प सुख भोगने स्वर्ग में भी भेज सकते हैं। लेकिन स्वर्ग नरक का समय खत्म होने के बाद ज्यादातर आत्माओं को फिर से पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ता है। ये संसार चक्र यूं ही चलता रहता है। देवयान मार्ग ऊर्ध्वगमन। अब प्रश्न आता है कि क्या सबको यमदूत ही लेने आते हैं? नहीं, भक्ति और पुण्य के बल पर कुछ आत्माओं के लिए रास्ता थोड़ा भिन्न हो सकता है। यदि स्त्री ने अपना जीवन बड़े सत्कर्मों में लगाया, ईश्वर भक्ति की या योग साधना द्वारा आत्मोन्नति की, तो मरते समय माहौल फर्क होगा। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसी धन्य आत्मा की मृत्यु शांत होती है, अंतिम सांसें भी आसानी से निकलती हैं, चेहरे पर तेज होता है, आसपास परिवार जनों द्वारा राम नाम भगवान की बातें की जाती हैं, गंगा जल तुलसी दल दिया जाता है जिससे उसकी आत्मा को संबल मिलता है। सबसे बड़ी बात, उस आत्मा को यमदूत जबरदस्ती घसीटने नहीं आते, उसके बदले दिव्य दूत या देवदूत आते हैं जो बड़े आदर से आत्मा को साथ लेते हैं। ऐसी आत्मा शरीर छोड़ती है तो प्रायः सिर के ऊपर या अन्य ऊर्ध्व द्वार से निकलती है, जो बताता है कि इस जीव ने जीवन पवित्र जिया। देवदूत आत्मा को सम्मान पूर्वक यमपुरी के दक्षिण द्वार से नहीं, बल्कि अन्य द्वारों पूर्व या उत्तर से अंदर ले जाते हैं। इसका फल यह होता है कि यमराज की सभा में भी उसके साथ कठोरता नहीं होती, बल्कि गरिमा के साथ पेशी होती है। कई बार कहा जाता है कि
2: मेरे प्यारे सुनने वालों, ये कथा को मैं यहाँ पर थोड़ा विश्राम दे रही हूँ।
3: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

मन्ना दे जी के आवाज में ये सुंदर सा गीत तेरी गरम कहानी, ये आप ही जानते हैं और परमात्मा जी जानते हैं। जैसे हमने अभी कथा में

0: दी थी, यहाँ से हम आपके लिए
1: जन्म लेना पड़ता है। ये संसार चक्र यूं ही चलता रहता है, देवयान मार्ग ऊर्ध्वगमन। अब प्रश्न आता है कि क्या सबको यमदूत ही लेने आते हैं? नहीं, भक्ति और पुण्य के बल पर कुछ आत्माओं के लिए रास्ता थोड़ा भिन्न हो सकता है। यदि स्त्री ने अपना जीवन बड़े सत्कर्मों में लगाया, ईश्वर भक्ति की या योग साधना द्वारा आत्मोन्नति की, तो मरते समय माहौल फर्क होगा। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसी धन्य आत्मा की मृत्यु शांत होती है, अंतिम सांसें भी आसान से निकलती है, चेहरे पर तेज होता है, आसपास परिवार जनों द्वारा राम नाम भगवान की बातें की जाती हैं, गंगा जल तुलसी दल दिया जाता है जिससे उसकी आत्मा को संबल मिलता है। सबसे बड़ी बात, उस आत्मा को यमदूत जबरदस्ती घसीटने नहीं आते, उसके बदले दिव्य दूत या देवदूत आते हैं जो बड़े आदर से आत्मा को साथ लेते हैं। ऐसी आत्मा शरीर छोड़ती है तो प्रायः सिर के ऊपर या अन्य ऊर्ध्व द्वार से निकलती है, जो बताता है कि इस जीव ने जीवन पवित्र जिया। देवदूत आत्मा को सम्मान पूर्वक यमपुरी के दक्षिण द्वार से नहीं बल्कि अन्य द्वारों पूर्व या उत्तर से अंदर ले जाते हैं। इसका फल यह होता है कि यमराज की सभा में भी उसके साथ कठोरता नहीं होती बल्कि गरिमा के साथ पेशी होती है। कई बार कहा जाता है कि ऐसे धर्मात्मा को यमलोक में भी नहीं रुकना पड़ता, सीधे इंद्र आदि देवताओं के लोक स्वर्ग में स्थान मिलता है। कुछ श्रेष्ठ आत्माएं जिन्होंने ईश्वर की अनन्य भक्ति की हो, वे देह छोड़कर सीधे परम धाम चली जाती हैं। जैसे विष्णु भक्तों के लिए कहते हैं कि विष्णु दूत आते हैं और उस आत्मा को बैकुंठ ले जाते हैं, फिर यमराज के दूत तो पास भी नहीं भटकते। अग्नि पुराण में भी कहा गया है कि पुण्य आत्माओं को मृत्यु के बाद ऐसे मार्ग से ले जाया जाता है जहां कोई कष्ट नहीं होता, जबकि पापियों को कष्टदायक रास्ते से यमलोक ले जाया जाता है। कुल मिलाकर जैसे कर्म वैसा फल, मरने के बाद आत्मा या तो देवयान प्रकाश मार्ग पकड़ती है या पितृयान धूम्र मार्ग पकड़कर न्याय के लिए यमराज की ओर जाती है।
2: दोस्तों, अब हम आते हैं उस हिस्से पर जिसका जिक्र सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। पाप कर्मों के आधार पर अगले जन्म की योनियां, गरुड़ पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में विस्तार से बताया गया है कि कौन से पाप के फल स्वरूप आत्मा को अगले जन्म में किस योनि से जानवर आदि में जन्म लेना पड़ता है। खासकर स्त्रियों के संदर्भ में कुछ पाप ऐसे बताए गए हैं जिनसे उन्हें बड़ी ही नीच योनियों में जाना पड़ सकता है। आइए कुछ उदाहरण कहानी की तरह समझें। पति से बेवफा या पर पुरुष गमन, व्यभिचार। यदि किसी स्त्री ने अपने पति को धोखा दिया, पर पुरुष के साथ संबंध बनाए या उल्टा आचरण किया, तो शास्त्रों में उसका फल भयंकर बताया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक कथा आती है जिसमें ऐसी स्त्री मरने के बाद लंबे समय तक नरक में सड़ती है और फिर लाखों बार गिद्ध बनकर जन्म लेती है। सैकड़ों वर्षों तक सुअरनी से मादा सुअर की योनि में रहती है और सैकड़ों जन्म तक जंगली हिंसक जानवर बनती है। देखिए, एक पति को त्यागने या विचार करने का कितना भयानक परिणाम बताया है। पहले असंख्य नरक यातनाएं, फिर गिद्ध सुअर हिंसक जानवर बनना। अंत में कहा गया है कि यदि कभी वो स्त्री फिर मानव रूप में आती भी है तो विधवा दरिद्र और रोगिणी बनकर जन्म लेगी। गरुड़ पुराण में भी कहा है कि जो पुरुष पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करते हैं उन्हें अगले जन्मों में भयानक राक्षस योनि भुगतनी पड़ती है। विशेषकर यदि वो स्त्री किसी ब्राह्मण या पूज्य कुल की थी तो वो पिशाच ब्रह्म राक्षस बनकर भटक हैं। एक जगह ये भी वर्णन है कि पराई स्त्री से संबंध रखने वाला अगले जन्म में सियार होता है। अब स्त्री ने खुद अपने शरीर को पाप कर्म में लगाया तो उसे भी उस पाप का फल समान ही मिलता है, यानी ऐसी पापिनी स्त्री भी मरकर आत्मा के रूप में प्रेत योनि में भटकती है और फिर कुतिया सियारिन जैसी नीच योनि में जन्म लेती है जहाँ जीवन भर उसे तृष्णा और तिरस्कार ही मिलता है। गर्भपात या गर्भ की हत्या। हमारे धर्म ग्रंथों में गर्भपात को एक बहुत बड़ा पाप माना गया है क्योंकि ये सीधे एक अनजान जीव की हत्या है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में यमराज कहते हैं, जो व्यक्ति गर्भ में पल रहे शिशु का नाश करते हैं उन्हें मृत्यु के बाद सीधे कुंभी पाक नरक में डाला जाता है। कुंभी पाक वो नरक है जहां उबलते तेल की कड़ाहियों में आत्मा को उबाला जाता है। वहां इस पापी आत्मा को अत्यंत लंबे समय तक 14 इंद्रों की आयु जितने समय तक यंत्रणा भोग पड़ती है गरुड़ पुराण के अनुसार भी गर्भ हत्या महापाप है, जो लगभग ब्रह्म हत्या के बराबर दंड का भागी बनाती है। नरक यातना के बाद ऐसी आत्मा का छुटकारा नहीं होता, उसे बहुत से नीच जन्मों से गुजरना होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में विवरण मिलता है कि गर्भपात करने वाले अगले 100 जन्म तक सुअर की

0: जन्म लेते हैं, फिर 7 जन्म तक गाय की योनि में, 7 जन्म तक सर्प की योनि में, फिर 60,000 वर्षों तक कीड़े मकोड़े बनकर गंदगी में पैदा होते हैं। यह क्रम सुनकर ही रूह कांप जाती है। सुअर जैसी तुच्छ और गंदी समझी जाने वाली योनि, फिर नाग जैसे डरावने जीव और न जाने क्या क्या, अंततः ऐसे पापी को इंसान की देह भी मिलती है तो भयंकर रोगों से ग्रस्त निर्धन निश्चित अपरिवारिक जीवन मिलता है। इसलिए हिंदू धर्म में गर्भपात को कदापि उचित नहीं माना गया। कहा गया है कि माँ के गर्भ में बच्चे की हत्या सीधे घोर नरक का द्वार खोलती है। चोरी और छल कपट, अगर स्त्री चोरी चकारी करती है, धोखे से दूसरों की वस्तु चुराती है, तो उसके अनुसार भी अगले जन्म में दंड भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण विभिन्न तरह की चोरी पर अलग अलग योनि की बात बताता है। जैसे जो अनाज चुराता है वो अगले जन्म में चूहा बनता है, जो वाहन चुराता है वो ऊंट बनता है, फल चोरी करने वाला बंदर बनता है, बर्तन चुराने वाला गिद्ध या कौवा बनता है, जिसने गाय चुराई हो वो भी गिद्ध जैसा पक्षी बनता है, क्योंकि गाय जैसा पवित्र प्राणी चुराना महापाप है। जो कपड़े चुराता है वो अगले जन्म में कीट बनता है। गरुड़ पुराण में कहा है, कपड़ा चोर पतंगा होता है। महिलाओं से जुड़ी एक बात ये भी आती है कि जो स्त्री दूसरी स्त्रियों के गहने या कपड़े चुराती है उसे कुष्ठ रोग तक हो सकता है, यानी मानव जन्म मिला भी तो अपंग अवस्था में। कुल मिलाकर चोरी का परिणाम भी कभी पशु योनि तो कभी भयंकर बीमारी के रूप में मिलता है। यही कारण है कि बचपन से हमें सिखाया जाता है चोरी सबसे घिनौनी आदतों में है, इसका पाप जीवन भर पीछा करता है। निंदा पर निंदा और असत्य भाषण। अक्सर लोग सोचते हैं कि जुबान के पाप शायद उतने बड़े नहीं होते, लेकिन पुराण कहते हैं कि दूसरों की निंदा या बेहुदा बातें करने का फल भी कष्टदायक जन्मों में मिलता है। जो लोग दूसरों को बेवजह बदनाम करते हैं, सत्यनिष्ठ भले लोगों की बुराई करते हैं, अगले जन्म में उन्हें नीच योनि या अपंगता झेलनी पड़ती है। उदाहरण के लिए गरुण पुराण में आता है, जो व्यक्ति पापपूर्ण आचरण करके लोक में बदनामी कमाता है वो अगले जन्म में कछुआ बनता है। इसे आप यूं समझिए कि जिसने जीवन में कुचर्चा कलंक और कलह फैलाए उसका अगला जन्म ऐसी योनि में होगा जो अधोगति का प्रतीक है। कछुए का जीवन जल मिट्टी में गुजरता है, बहुत धीमा और तुच्छ समझा जाता है। इसी प्रकार अत्यधिक ईर्ष्यालु प्रवृत्ति भी अगले जन्म को खराब करती है। कहा गया है, ईर्ष्यालु व्यक्ति अंधा पैदा होता है या मधुमक्खी जैसा कीट बनता है जो केवल डंक मारना जानता है। लगातार झूठ बोलने वाले की अगले जन्म में जुबान काम नहीं करती, वो गूंगा या हकला पैदा होता है। जिन महिलाओं को दूसरों की खुशियों को देखकर जलन होती है और वे चुगली निंदा में लिप्त रहती हैं, वे अगले जन्म में संभवतः उसी तरह किसी तुच्छ जानवर जैसे कौवा या चील की योनि में जाएंगी, जो हमेशा मल में मुंह मारते हैं। शास्त्रों में गिद्ध कौवे को अक्सर नीच कर्मों का फल बताया गया है। गरुड़ पुराण तो पापों की पूरी सूची देता है। कुछ का जिक्र पुरुषों के संदर्भ में है, पर स्त्रियां भी वही कर्म करें तो परिणाम समान ही रहते हैं। जैसे गुरु की हत्या करने वाला मिर्गी का रोगी होकर जन्मता है, निर्दोष जीवों पर अत्याचार करने वाला बौना बनता है, जो अपने पति या परिवार को छोड़कर दूसरों से अवैध संबंध बनाए उसका अगला जन्म ऐसा पशु होगा जिसे शिकारी मार डालेंगे, यानी उसकी जिंदगी बहुत छोटी और कष्टपूर्ण होगी।
1: जो अपने पति की हत्या कर दे या उस पर अत्याचार करे, ऐसी स्त्री को अगले जन्म में पति का सुख नसीब नहीं होता, वो जन्म जन्मांतर तक अकेली रहकर दुख भोगती है। ब्रह्म हत्या, किसी ब्राह्मण या संत की हत्या का पाप तो सबसे भारी है। ऐसे पापी को कई जन्मों तक घोर नरकों में जलने के बाद ऊंट सुअर घोड़ा जैसे पशुओं की योनि में भटकना पड़ता है। गौ हत्या का पाप भी अनंत नरक भोगने के बाद सर्प और अन्य जहरीले जीव बनकर भुगतना पड़ता है। यहाँ तक कि जो लोग माता पिता या अतिथियों का अपमान करते हैं वे अगले जन्म में बहरे अंधे कुबड़े जैसे अंगहीन शरीर लेकर पैदा होते हैं, और भगवान की निंदा या शिव आदि देवों का अपमान करने वाले अगले जन्म में गुप्त रोग त्वचा रोग जैसे दुख झेलते हैं। स्पष्ट है, हर छोटे बड़े पाप का फल किसी न किसी योनिगत दुर्गति या मानव जन्म में भारी कष्ट के रूप में मिलता ही है। इन सब कथाओं का सार यही है कि कर्म का सिद्धांत अटल है। स्त्री हो या पुरुष, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल उसे मरने के बाद और अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। ये पुराणों में बताए विवरण कभी कभी हमें डराने के लिए भी होते हैं, ताकि हम अनुचित कर्मों से दूर रहें। आखिर गरुड़ पुराण स्वयं एक दर्पण की तरह है, जिसमें हमारे कर्मों का परिणाम दिखाकर हमें सचेत किया जाता है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक यात्रा का पड़ाव है। आत्मा अमर है, पर अच्छे बुरे कर्मों की गठरी उसके साथ चलती है। इसलिए हर स्त्री पुरुष को चाहिए कि जीवन में सदाचार, सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चले। ऐसा करने से न सिर्फ मौत के वक्त कम कष्ट होगा, बल्कि आत्मा उज्जवल मार्ग से जाएगी और हो सकता है पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाए। अगर भूलवश पाप हो भी जाए तो शास्त्र प्रायश्चित और सुधार का मार्ग बताते हैं। ईश्वर भक्ति, दान पुण्य, सेवा और पश्चाताप से कर्मों का बोझ हल्का किया जा सकता है। आखिर में हिंदू धर्म ग्रंथ हमें यही सिखाते हैं कि जीवन एक अनमोल अवसर है आत्मा के विकास का। मृत्यु अटल सत्य है, लेकिन वो अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। इस शुरुआत को सुखद या दुखद बनाना हमारे हाथ में है। हमारे कर्म ही तय करेंगे कि मरने के बाद यमदूत हमारा हाथ पकड़ेंगे या विष्णुदूत। हम नरक के अंधकारमय रास्ते पर जाएंगे या देवों की ज्योतिर्मय राह पर। इसलिए ऐसी कथाएं सुनकर डरे नहीं, बल्कि सबक लें। जीवन को इस तरह जिए कि अंत समय शांतिमय हो, ताकि जब हमारी आत्मा देह त्याग तो चेहरे पर मुस्कान हो, हृदय में भगवान का नाम और मार्ग दिखाने को दिव्य ज्योति हो। यही इन पुराण कथाओं का संदेश है। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद के आत्मा के सफर के विषय में बताया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो

बात तो सही है कि नेकी तेरा साथ चलेगी बाबा। और ये सुना दी हमको आज के प्रोग्राम में महेंद्र कपूर जी। महेंद्र कपूर जी की आवाज में नेकी तेरा साथ चलेगी। फिल्म का नाम आप जरूर जानना चाहते हो तो मैं बता देती हूँ, फिल्म का नाम आंसू और मुस्कान। और हम देख रहे हैं ये फिल्म नई खंतीन सैफ अंतक में रिलीज किया गया है। आपको लेकर चलते हैं देखे तो एक बार फिर महेंद्र कपूर जी के आवाज में और क्या फरमा रहे, जरा हम मिलकर सुने।

अवश्य अवश्य, महेंद्र कपूर जी ने फरमा दी है कि क्यों करता है हेरा फेरी, ये दौलत ना आपके है ना मेरी है, ये दौलत हमको कमाना पड़ता है, ये जीवन सफल बनाने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए औरों को काम आने के लिए।

कहते कि आज से बेहतर कुछ भी नहीं, आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज ये पल कभी जाता नहीं।

ज़िंदगी जो मिले है इसे खुल कर जियो, क्योंकि ना वक्त दोबारा आता है और ना ये जीवन दोबारा मिलता है।

राम नाम जो जोड़ ले वही जाता है। हम तो क्या कहे, ये शब्द, ये गीत, ये भजन, निर्गुण भजन जो है, चेतावनी वाला भजन जो है, हमें याद दिलाता है किस काम के लिए हम इस धरती पे आए हैं, इस मृत्यु लोक में हम आए हैं। इसलिए फावन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से ये हमको चेतावनी दिला देते हैं, हमारे दिमाग को झकझोड़ देते हैं, जगा देते हैं, समझाते हैं कि हम किस लिए आए हैं इस मृत्यु लोक पर, हमारा कर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है, हम लाए हैं क्या और ले जाएंगे क्या। इस पर हम जरा गौर करें। देने सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद किया जाता है।

अल्फा आंदरन के एक छोटा सा समाचार है। मेर दर पोलिट सिवा खंस नार इंडस्ट्री ट्रेन नार मेल्डिंग स्कित पड़ते हैं। अल्फा आंदरन के समाचार है। ऑफ अन इंडस्ट्री ट्रेन इन अल्फा आंदरन इस दिनसदाग आवंद मोगलिक गस्कोटन। Niemand raakte daarbij, gewoon de politie rukte met meerdere wagens uit.

सुबह का वक्त कभी कभी ऐसा होता है कि थकान के कारण हम जल्दी जाग नहीं पाते। तो जैसे हमें 7 बजे नौकरी पे जाना है या प्लुख दिनस्त फर्शकेलेंद दिनस्त है एसर, और हम जल्दी से नहीं जाग पाते हैं तो हम जल्दबाजी में घर से निकलते हैं। Ik zeg mijn mening, als u laat bent, dan bent u laat. Ga dan toch voorzichtig op pad. Want als u gaat haasten, kan ongelukken gebeuren.

0: जी मेरे प्यारे सुनने वालों, जिनका इंतज़ार था वो आ गया है। तो यहाँ से श्री पंडित राजकुमार महातम जी को हम बहुत प्यार के साथ स्वागत कहती हूँ। पंडित जी आपको नमस्कार है और आपको हार्दिक से स्वागत है, आप आकाश में हैं।
1: नमस्कार, धन्यवाद शांता जी।
0: जी पंडित जी,
1: हरि ओम नमः संभवाय च मय भवाय च नमः शंकराय च नमः स्वासित्राय च मोक्ष स्वरूप ईश्वर को नमस्कार। संसार सुख देने वाले प्रभु को नमस्कार। आनंद देने वाले प्रभु को नमस्कार। कल्याणकारक ईश्वर को नमस्कार। ईश्वर को बारंबार हमारा नमस्कार हो। सर्वप्रथम आकाशवाणी के सुनने जहाँ तक हमारा आज पहुँचे आप सभी को जाके थाविक मेरा प्रणाम नमस्कार या राम राम सीताराम पहुँचे। हम आप कितने आनंद ले रहे थे जहाँ पर संता जी ने कितने अच्छे ढंग से हम आपको सेवा कर रहे थे, उनको मैं भूरी धन्यवाद दे रहा हूँ। और ख़ास करके रेडियो फान को जो मालिक हैं, जो समय दिया धर प्रचार करने को, उनको भी मैं भूरी धन्यवाद दे रहा हूँ। आकाशवाणी के सुनल ये साहब के वृत्त मालूम है, इस समय सावन को महीना चल रहा है। सावन का महीना, सावन मास हम कहते हैं, सावन को महीना। खास करके भोलेनाथ शंकर बाबा को हम आप इसमें बहुत ध्यान करते हैं, उनको पूजा करते, कुछ कुछ अर्पण भी करते हैं ना। चलो थोड़ा कुछ भोलेनाथ शंकर बाबा के बारे में विचार किया जाए। भोलेनाथ शंकर बाबा देव का देव, भंडारों को भंडार भरने वाले हैं। आप जो वस्तु मांगते हैं भोलेनाथ शंकर बाबा, कोई भक्त निराशन यानी निराश नहीं करते हैं। भस्मासुर के नाम आप सुने होंगे, गाथा जानते होंगे। भस्मासुर ने भोलेनाथ शंकर बाबा खुश किया। भोलेनाथ शंकर बाबा कहे मांग लो, क्या मांगना है। तो भस्मासुर ने कहा भोलेनाथ शंकर बाबा से, हमें वो शक्ति दो जिनको ऊपर मैं अपने हाथ रखूं उनके सिर पर वो भस्म हो जाए। भोलेनाथ शंकर बाबा उन्हें आशीर्वाद दे देते हैं आकाशवाणी के सुनने वालों। लेकिन भस्मासुर ने विचार किया, पहले मैं जा करके भोलेनाथ शंकर बाबा को भस्म करूंगा तो क्या होते आकाशवाणी के सुनने वाले। भस्मासुर जो है भोलेनाथ शंकर बाबा पीछे दौड़ते हैं और भोलेनाथ शंकर बाबा वहां से दौड़ते हैं। कौन? भोलेनाथ शंकर बाबा। लेकिन भोलेनाथ शंकर बाबा क्या करते आकाशवाणी के सुनने वाले, तो देवा का देव भंडारों को भंडार भनवा भोलेनाथ शंकर बाबा एक मोहनी को रूप धारण किया। एक मोहनी को रूप धारण करके नाचने लगा और भस्मासुर नाच देख कर करके ना मोहित हो गए, तन मन सुदबुद्ध सब खो गए। कौन वहां पर? कौन? भस्मासुर। तो भोलेनाथ शंकर बाबा मोहनी रूप धारण करके अपना जो हाथ अपने सिर पर धर के नाचते थे भोलेनाथ शंकर बाबा, और वो नाच देख करके कौन भस्मासुर ने तो मोहित हो गए। तो भस्मासुर ने खुद अपना हाथ अपने सिर पर रखे, क्या हो गया? भस्म हो गए। कहने के तात ये है, हम वहाँ कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं ना तो हम सोचते हैं बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन परमात्मा का आगे हमें अपना सिर झुकाना है। हम कुछ प्राप्त करते भोलेनाथ शंकर बाबा को तो हमें धन्यवाद उनको कहना चाहिए ना। आकाशवाणी के सुने हम आगे बढ़ते हैं। जीवन में सफलता के लिए सबसे आवश्यकता वस्तु उसका आत्मविश्वास है। जब तुम ईश्वर के इस नाम में पूर्ण विश्वास होगा तभी तुम इस नाम के पीछे छिपे हुए पर ब्रह्म तक पहुंच सकोगे। जब तुम इस पे ध्यान करना, उपमा देता हूं मैं ना, जब तुम लकड़ी के दो लकड़ी को रगड़ोगे ना तो वहां से अग्नि उत्पन्न होती है। जब तुम दही को मंथन करते हो तभी उससे मक्खन निकलता है ना। जब तुम इस सृष्टि के छिपे हुए रहस्य और भेदों को जानने का प्रयत्न करोगे, तब तुम्हें ज्ञात होगा कि राम का मधुर नाम स्वयं ही वह तत्व है। व्यक्ति को चाहिए कि अपने हृदय को मधुर और कोमल बनाना। निरंतर हरि नाम सुमरण से ही ये संभव है, इसके लिए अन्य कोई उपाय नहीं है। राम नाम संकीर्तन के लिए किसी मार्ग को अपनाया जा। फिर से बात दोहरा रहा आकाशवाणी, राम नाम संकीर्तन के लिए किस मार्ग को अपनाना चाहिए, इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम आप प्रेम पूर्वक हृदय से प्रभु को नाम जपेंगे तो आपको पूर्ण पावन दिव्य स्वरूप मधुर प्रभु के दर्शन अवश्य होगा। परमात्मा हम वहां भी जानते आकाशवाणी के सुने वालो, परमात्मा सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान और कण कण में रमने वाले हैं। ऐसा कोई स्थल नहीं जहाँ ईश्वर ना हो। अत राम नाम लेने के लिए किसी विशेष समय अथवा विशेष स्थान खोजने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ भी आप बैठ लो भगवान के ध्यान करो। फिर से बात वेद में दोहरा रहा हूँ, ऐसा कोई स्थल नहीं जहाँ ईश्वर ना हो। अतः राम नाम लेने के लिए किसी विशेष समय अथवा विशेष स्थान खोजने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु का नाम तो कभी भी और कहीं भी लिया जा सकता है। ना आकाशवाणी के स्वर हरि के नाम में जो पावन है, जो दिव्य है, इसके मतलब इसका पता लगाना चाहिए। वेद अनंत है, उनमें अरंग होना असंभव है। इन अनंत वेद भगवान से उपनिषद की उत्पत्ति हुई है ना, इसलिए उन्हें वेदांत की संज्ञा दी गई है। भागवत गीता सभी उपनिषदों का निचोड़ है। ये हमें सुलभ है इसलिए कि हम जीवन में अध्यात्मकता को अपनाए। किंतु लोग तो आज इस पवित्र ग्रंथ को भागवत गीता को क्या समझते, मैं आपके ऊपर छोड़ देते आकाशवाणी के सुने आलो। इस पवित्र नाम के उच्चारण हेतु और उस परम स्थित को प्राप्त करने के लिए गोपिया ने भगवान कृष्ण के नाम प्रकार से उनके प्रार्थना करने लगे। कौन? गोपिया। हरि का पवित्र नाम हो गीता का सार है। इसका उच्चारण और अत्यंत सरल, अत्यंत मधुर और अत्यंत सुलभ है। यदि तुम किसी एकांत स्थल में बैठकर हरि नाम का स्मरण करने लगो तो तुम्हारा हृदय एक अत्यंत आनंद से भर जाएगा। ये मधुर तुम्हें किसी अन्य प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकता। नारद, सूरदास, मीरा, सुरबाई की सारी साधना का केंद्र ही प्रभु का मधुर नाम रहा है। रावण वध के इस पे ध्यान करना आकाशवाणी के सुन लालो। रावण वध के उपरांत राम अयोध्या लौट आए ना, राज तिलक के समय उन्होंने लोगों को उपहार बांटने शुरू किया। जैसे हम आप सुरनाम जाते घूमने के लिए ना कुछ तोहफा के रूप में, चिन्ह के रूप में ले जाते देने के लिए पलवार के लिए ना। खाली हाथ हमें कहीं ना जाना चाहिए, कहूँ जाओ तो कुछ ले के भी जाओ। सास लिखाना, खाली हाथ नहीं जाना है। रावण के वध के उपरांत राम अयोध्या लौटे।

जो सब जीवों का रक्षक वो नाथ है, क्या बोलते दीनानाथ कौन है? हे नाथ हनुमान तो कौन बोलते है नाथ? हनुमान तो वानरों के समक्ष है, आपने जो भी काम उन्हें सौंपा उन्होंने आदर्श रूप में उनका सफल संपद किया है, आप इसे कैसे भूल सकते हो? कौन सीता मैया कहे प्रभु राम से? राम ने उत्तर दिया आकाशवाणी के सुन, राम ने क्या उत्तर दिया? मेरे पास हनुमान को देने के लिए कोई वस्तु नहीं है, सम्मान जान्यो यानी सामान्य जनों को कोई ना कोई उपहार देकर संतुष्ट किया जा सकता है, किंतु उस हनुमान को जिसके रूम रूम में मेरा नाम बसा हुआ है, भला मैं क्या देकर संतुष्ट करूं? ये सुनकर सीता के मन में एक सुंदर विचार आया, जो आप जानते हैं ना, माँ के सुंदर विचार आया। वे सोचने लगी इस शुभ अवसर पर हनुमान के मन को चोट नहीं आना चाहिए, अतः उन्होंने अपना अमूल्य रत्नों का हार अपने गले से उतार कर हनुमान को दे दिया। हनुमान ने उसे स्वीकार किया, फिर उसमें से एक मोती तोड़कर निकालता और ध्यान से देखा, फिर भरी सभा में उसे हार को ठुकरा दिया। उपस्थित सभी लोगों ने समझा कि ये तो हनुमान का ये बानर को तो ये बानर के तो ये टूटी भाषा में कहूं ये बानर को ये तो उनको मतलब हर बानर जो भी कुछ भोजन करते कुछ खाते हैं ना, तब पहले फोर करके खाते, कहे ये तो हर बानर को ये काम है, भला वानर से और क्या आशा की जा सकती है। ये देखकर सीता ने हनुमान से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया है हे माँ, हे वानर श्रेष्ठ? हनुमान ने उत्तर दिया, हे माँ माँ, मेरे शरीर में प्रत्येक रूम में राम राम का निवास है, मेरे शरीर में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिससे निरंतर राम नाम की ध्वनि ना निकलती है, तो मैं इस कंठार को लेकर क्या करूँगा, क्योंकि इसमें तो कहे भी राम का नाम नहीं है। आकाशवाणी के सुनने वालों, ये देख करके हनुमान बाबा उसमें प्रभु राम राम देखते कहूँ नहीं है तो जा कर करके कड़ी तोड़ लेते हैं। वहां पर सीता माँ ने कहा, हनुमान लला आपने क्या किया? तो हनुमान बाबा ने कहा, माँ, हनुमान बाबा ने कहा कि मेरे मन में मेरे हृदय में है माँ राम। कौन बोलते हैं? हनुमान बाबा। तो जाकर का आकाशवाणी की सुन गाथा आप जानते, हनुमान साहब क्या किया? प्रभु के नाम लेकर के अपने दोनों हाथ से पंजा सपना सिर अपना जो मतलब दोनों हाथ से लेकर अपना छाती जो बोलते हैं उसको जा करके दबा करके चीर देते हैं, और वहां पर क्या विराजते हैं, बांवर सीता माँ दहना, और वहां पर कौन है प्रभु राम, सब देख करके चकित हो जाते, अपना सिर झुका लेते हैं। तो कहने एक तात हैं, हम वहां भगवान को भाव भक्ति जो करे अपने हृदय से, तो ज्यादा ना कहते हुए युवानी द्वारा अपना परिचय विराम करने में जा रहा हूँ। हरि ओम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् भाग् हरि ओम, शांति शांति शांति, हरि ओम।

वक्त निकाल कर आय केयर और सेवा की है। तो फाहन हिंदुस्तानी रेडियो के तरफ से सभी सुनने वालों की तरफ से पंडित राजकुमार महातम जी को हार्दिक से धन्यवाद किया जाता है। एक शुभ दिन आप सभी को। देने सुनने के लिए धन्यवाद जी। थिंग फॉर हाल ऑफ थिंग हो चला है, थिंग फॉर हाल ऑफ थिंग हो चला है। सुंदर सा इंस्ट्रूमेंटल आपके लिए चुनकर और लाई हूँ।

Een boomtak breekt af en valt op een rijdende auto met open dakraam. Open dakraam, die zijn hambi kijkt, open kap. Pehle open kap in Suriname mein, shadi biwa mein, ye sab chalate the, dulha dulhan ko lekar. और यहाँ पर भी ऑटो गाड़ी जो है वो भी बनाया गया है मैथ ओप दाकराम। तो ये गाड़ी हांकने वाला गाड़ी को ऊपर से दाक खोलकर चला रहा था। हाँ, मौसम भी था बढ़िया और अचानक में बोम तक उसका गाड़ी में दाकराम में आ गिरा। ऐसा हाँ हादसा भी हो सकता है, हो जाता है, हो सकता है भी। तो देखो ना, सड़क पर जो हो, जहाँ भी हो, सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी है कि आप अपना जो भी आप मानते हो, ईश्वर, अल्लाह, प्रभु, यीशु मसीह, आप जरूर से हरदम वेद करना, प्रार्थना करना। घर से निकले या घर पे हो, जहाँ पे भी हो, हर पल आपका रक्षा करे। तो एक बड़ा दुर्घटना जो शायद होता होना हो होकर बड़ा दुर्घटना से आप बच जाओगे। हाँ, बोम तक ब्रेक अफ एंड फॉल्ट ऑफ राइडिंग द ऑटो मेट ओपर दाकराम। ये खरफसांद के समाचार है। तरवेलन ऑटोमोबिलेस मेट एन ओप दाकराम लंग्स बोम रेड फॉल्ट एर ओपेंस एन तक ऑप द ऑटो। हेट गबेर्ड फ्राइडेमिडाग इन द पोपुलेरे स्ट्रेट इन खरफसांद। En archeologen in Peru vinden skelet van persoon die mogelijk ritueel geofferd werd. Ha, to aap soch sakte ho ki pehle zamane mein logo ko ritueel offer ho jata tha. To socho kon zamane ke ye archeologon ye skelet paya hai।

दिल तो पागल है ये सुंदर सा इंस्ट्रूमेंटल, यहाँ से मिलकर हम सुने काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छा सा इंस्ट्रूमेंटल आपके लिए पेश कर रही थी, और यहाँ से आपके लिए एक स्पेशल।

हैप्पी हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। सात पले और सात बड़े हैं। हाँ भाई बहन, सात पलते हैं, सात बढ़ते हैं, खूब मिला बचपन में प्यार। जी हाँ, खूब मिला बचपन में प्यार। इसी प्यार को याद दिलाने आया है राखी का त्यौहार। प्यारी बहना, तुम हमेशा प्यार और हंसी से भरपूर रहे, ये एक भाई की प्रार्थना है, दुआ है अपनी बहन की ओर कि प्यारी बहना, तुम हमेशा प्यार और हंसी से भरपूर रहो, ये राखी हमेशा हमारे रिश्ते को और भी मजबूत रखे। ईश्वर करे तुम दुनिया की हर खुशी मिले, ईश्वर करे कि तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिले और मिल जाए तेरी जिंदगी का हर पल फूलों की तरह खिल जाए। रक्षाबंधन मैन अली फमेंसर, रक्षाबंधन बतेकंत लेतर लक द बांत फॉम बस कैरमिंग। रक्षा इज बस कैरमिंग एंड बंधन इज बांत ऑफ रेलाची। Het is een belangrijk hindoeïstische feest waarop de liefde, de verbondenheid en de zorg voor elkaar tussen broers en zussen centraal staan. En wat het feest inhoudt, dat is namelijk de betekenis is, het staat voor de plicht van een broer om zijn zus te beschermen en de liefde en zegeningen van een zus voor haar broer ook. De Raki, de zus, bindt een speciaal gekleurd koordje, de Raki, om de pols van haar broer. En wederzijdse belofte, de broer belooft om altijd voor haar te zorgen en geeft haar vaak een cadeautje of een geldboeket. En wanneer het wordt elk jaar gevierd op de dag van de volle maan in de hindoeïstische maand Sravan, meestal in augustus. Dan weet u dat ook. बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता। गम वो चाहे दूर भी हो तो गम नहीं होता, अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, पर भाई बहन का प्यार, हाँ भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं होता। द लिफ्ट फानोसिस इज अन वार सेगन सेल्फ आल्सो फेयर वेग वोंट इज एर गेन फरद्रीत रिलेशंस फरवाटरन फाक डोर अफस्टांड मार द लिफ्ट टुसे ब्रूर एंड सिस फरद्वेंट नोइट।

कितने सुंदर से भोजपुरी भाषा में सुंदर सा रक्षाबंधन गीत सुना दी हमको। रिक्स रिलैक्सिस एतरा की कोर्ट इस फॉल लिफ्ट मैंने लिखा मैं से एतरा की कोर्ट इस फॉल लिफ्ट एंड हैट हार्ट फन अब्रूर इस हैट क्रोच्ड एक बेट एंड वे बेटर दैट यू आल्टेड बाय मी ब्लेव एक ड्राग ये एलक यार मैं राखी अन मैन हार्ट द ड्राट फॉर रिलेशनशिप अन राखी ड्राट इज फॉल सॉर्ग फॉल लिव्ड द लिव्ड फॉर अ ब्रूर इज आल्टेड सेल्सम एक बेट दैट वे देख बेलकार ब्लेवन dat we dicht bij elkaar blijven in alle tijden en met elk raki win je mijn liefde. रक्षाबंधन के हार्दिक से बधाई पेश हो रहा है आपका फैन हिंदुस्तानी रेडियो के तरफ से।

सुंदर अति सुंदर ये सुंदर सा रक्षाबंधन गीत आपके लिए पेश हो रहा है। कच्चे धागों से बनी पक्की डोर है जी मेरे प्यारे सुनने वालों, कि कच्चे धागों से बंधी पक्की डोर है राखी, प्यार और मीठी शरारतों की डोर है राखी, भाई भाई की लंबी उम्र की दुआ है राखी, बहन के प्यार का पवित्र दुआ है राखी। रक्षाबंधन का त्यौहार है मेरे दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार है, हर तरफ खुशियों की बौछार है, और बंधा एक रेशम की डोरी में भाई बहन का प्यार है। रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक से शुभ

तहे दिल से करते हैं शुक्रिया, हाँ तहे दिल से करते हैं शुक्रिया उन प्यारी बहनों को हम, जो पास रहे या ना रहे पर उनका प्यार कभी नहीं होता कम। या रब मेरी दुआओं में इतना असर रहे, फूलो फूला भरा सदा मेरी बहना का घर रहे।

और वागित हुसैन के आवाज में पेश किया गया है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों, आपको यह बताती हूँ और यह भी कहती हूँ कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, कोशिश करें जरूर से मुस्कुराते हुए ये पल जो है, ये दिन जो है, इसे बसर करें।

सभी को बहुत सारे बधाइयां पेश किया जाता है। कहते हैं मेरे दोस्त, कहते हैं कि पल पल इंतजार किया उस पल के लिए, ओ माय गॉड, अब वो पल आया भी तो सिर्फ एक पल के लिए। अब हर पल दुआ है उस पल के लिए, अब हर पल दुआ है उस पल के लिए, काश फिर आ जाए वो पल एक पल के लिए। तो आप सुन रहे हैं कि ये पल जो है, ये क्षण जो है, कितना महत्वपूर्ण है। तो इसे जरूर से एक मोय वाला यानी कि एक अच्छा दिशा देना, जाके कल जाकर पल बीतने पर ये एक अच्छा यादगार हो जाए। इस बार हम सुनेंगे शहीद वागिद हुसैन।

हाँ, शहीद वागित हुसैन के बाद आपके लिए मैं ला रही हूँ प्लेलिस्ट पे जो तैयार है नदीम खान जी की आवाज में। इस बार हम सुनेंगे, उससे पहले ये बता दे कि मार्क एर अंस्ट्रालंद मोमेंट अन अंस्पानंद मोमेंट और अंस्पानंद ताखवान खनित वान एल खनित वान द क्लेने देंगन समाकन हैत लेवन ग्रोट्स। Neem de tijd vooral, vooral neem de tijd voor jezelf. Je bent belangrijk, ja, want als u er niet bent, dan kunt u wel zelf invullen. Zorg goed voor jezelf. Zorg goed voor uzelf. Geniet, relax met heel veel, heel veel, heel veel.

उन्होंने छीन लिया बचपन का प्यार। इस बार है फिर से आपके लिए है उमर वागिद हुसैन, मैं किसे अपना कहूँ।

लता जी के गाए हुए गीत यहाँ हम सुने उमर वागिद हुसैन की आवाज़ में, और इस बार सुनेंगे कि काश कोई मेरा सहारा होता मुकेश जी के गाए।

ताल से ताल मिला, कितना सुंदर गीत आपके लिए चला दिया गया है। आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से आपके लिए एक सुंदर सा शिव भजन आपके लिए।

वाकई में इश्क के बिना क्या जीना यारो, क्योंकि प्यार के साथ ये सारा सृष्टि रचाई गई है। कल जो आप कर नहीं पाए, जो शुभ कार्य आप कल नहीं कर पाए, तो कोशिश करके उसे आज जरूर पूरा कर लेना। अगर किसी का साथ देना हो तो मेरे दोस्त, अगर किसी का साथ देना हो तो बुरे वक्त में दो। जो वक्त बहुत अच्छा चल नहीं रहा है, उस वक्त में किसी का साथ दे दो। अच्छे वक्त में तो पूरी दुनिया साथ देती है, इसलिए अगर किसी का साथ देना हो तो उनका जो थोड़ा से बुरा वक्त चल रहा है, उनका आप साथ दे दो।

वही देता वही लेता उसी का है संसार, एक आता एक जाता ये जग का है व्यवहार। फाउ हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा मृत्यु समाचार पुकारा जा रहा है, ध्यान दीजिए या गौर फरमाइए। परिवार के दो मृत्यु समाचार है कार्यक्रम में। Den Haag, Tegelen, Limburg, Leiderdorp और Zeeland से परिवार गंगा और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि शुक्रवार 14 अगस्त को शाम 5:30 बजे यानी 7:15 पर 85 साल के आयु में इंदलीफ तहत फन 5 तख्तियार दो सार चंद्रसेन गंगा और नन कुमार गंगा का बहनोई, कारला गिरधारी का नंदोई, निर्मला गीता प्रवीण और रेखा का फुफ्फा, 17 लड़कों का नाना परनाना और फुफुआ ससुर और ननवा ससुर, लिम्बेरुख तेखलन से सुरेन सुनीता धुरेन मनोज जयदेव आनंद का मौसा, 30 लड़कन यानि दर्थ केंद्रन, आजा पर आजा नाना पर नाना मौसवा ससुर अजवा ससुर और ननवा ससुर, बड़की सविता गंगा की छोटकू, लिम्बेरुख से बहन हम लोगों की बहन आनी इंद्रावती सरजमी सिर गंगा के पति, बेटा स्वर्गीय हैंक जयराज का पिता, सेलंत ओ सुबेरख के रहने वाला श्रीमान पुण्य आत्मा कोंद्राज सिंबुदत्त सरजमी सिर का स्वर्गवास हो गया है उनके निवास स्थान पर। आप उन्हें ज्योतिष के नाम से भी जानते थे और सूरीनाम में वेलखलेखन के निवासी था और वेलखलेखन स्कूल का लेरार था। ऐतफात यानी कि शव का दर्शन आप कर सकते हैं हेसे उस लंत में ननसन बान कंत व्यक्तवे खुश में। हम दोहराते हैं हेसे उस लंत ननसन बान कंत व्यक्तवे खुश में। अर्थी को आप देख सकते हैं 18 अगस्त को 5 बजे से 6:45 बजे तक 7:15 तो क्वार्ट फोर सेस, और अगले दिन 9:15 अगस्त को 7:30 से 7:15 तक। हम दोहरा रहे हैं, देखने का अवसर है 8 अगस्त 7:15 तो 7:45 यानी 5:15 से 6:45 तक, और वोंसदाग 9:15 अगस्त को 7:30 से 7:15 तक। आने वाला दोंदरदाग 20 अगस्त शाम 2 बजे नानसन बान कंत व्यक्तवे के क्रेमेटोरियम में दाह क्रिया किया जाएगा खुश में। जानकारी के लिए तार का नंबर दिया गया है 06 22 42 12 31। खबर को हम दोहरा रहे हैं, Den Haag, Tegelen, Limburg, Leiderdorp, Zeeland से समस्त परिवार गंगा और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि दो सार चंद्रसेन गंगा और नन कुमार गंगा का बहनोई, कारला गिरधारी का नंदोई, निर्मला गीता प्रवीण और रेखा का फुफ्फा, 17 लड़कों का नाना पर नाना और फुफ्फा ससुर और ननवा ससुर, लिम्बेरुख तेखलन से सुरेन सुनीता धुरेन मनोज जयदेव आनंद का मौसा, और 30 लड़कों का आजा पर आजा नाना पर नाना मौसवा ससुर अजवा ससुर और ननवा ससुर, बड़की सविता गंगा के छोटकू, आनी इंद्रावती सरजमी सिर गंगा के पति, बेटा स्वर्गीय हैंक जयराज का पिता,
सेलांत के निवासी और सुबुर्ग के निवासी श्रीमान पुण्य आत्मा कोनराज सिंह बुद्धत का स्वर्गवास हो गया है 85 साल की उम्र में बीते हुए शुक्रवार 14 अगस्त 2005 को, जिन्हें आप ज्योतिष के नाम से भी जानते थे और वेल्खलीकन में सूरीनाम में उनका निवासी था वहाँ का और वहाँ का स्कूल का लेरार भी था। शव को आप देख सकते हैं हेत सेव सलंत ननसन बान कंत वेख्तवी खुश में दिनसदाग 18 अगस्त के 7:15 to 6:15 और वोसदाग 19 अगस्त को 7:30 to 7:15 तक। डाकरिया आने वाला दोंदरदाग 20 अगस्त को 14:00 यानी शाम 2 बजे ननसन बान कंत वेख्तवी खुश सेलंत में। जानकारी के लिए तार का नंबर दिया गया है 0622412131।

0: हमें।
1: दूसरा मृत्यु समाचार सुनने के लिए ध्यान दीजिए या गौर फरमाइए।
2: सेलंत हुस ओ सुबेरख से परिवार सरजुमिसर, परिवार सरजुमिसर बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि शुक्रवार 14 अगस्त को क्वार्ट ओवर फाइव शाम को 85 साल की उम्र में यानी इंदलीफ सईद फन फैफ तख्तियार दो बेटियां शकुंतला और शर्मिला सरजुमिसर के पिता दो दामाद राज या राजन रौफ कुंदन पांडे और हेमंत रघुनाथ का ससुर चार बेटा शोस बोइक अर्नोल्ड रामोन रोमेयो सरजुमिसर का पिता 20 नाती नातिन पोता पोतिन पर नाती पर नातिन नदमाद और नतपतो के आजा पर आजा नाना पर नाना अजवा ससुर और ननवा ससुर तीन बहुएं यानी सोन दोख्तर्स गीता श्यामलाल उषा तुलसी अरुणा अयोध्या का ससुर पत्नी इंद्रावती सरजुमिसर का पति स्वर्गीय बेटा हैंक जयराज का पिता सेलंत ओ सुबुर के रहने वाला श्रीमान पुनिया आत्मा कोनराद सिंबुदत्त सरजुमिसर का स्वर्गवास हो गया है उनके निवास स्थान पर। आप उन्हें ज्योतिष के नाम से भी जानते थे और सूर्य नाम वेलखलीखन के निवासी था और वहाँ वेलखलीखन का स्कूल का लेरार था। शव के दर्शन आप कर सकते हैं एथ फार्थ सेंट्रम हेथ सेव सलोंद ननसन बान कंत वेख्तवी खुश में दिनसदक 18 अगस्त को 17 ईयर से क्वार्थ ओवर 6 तक और 19 अगस्त को हाफ सेफ से क्वार्थ ओवर 6 तक। डाक्रिया डोंदरदक 20 अगस्त 14 को शाम 2 बजे वही एड्रेस पर ननसन बान कंत वेख्तवी खुश सेलोंद में। खबर को हम दोहरा रहे हैं सेलंत हुस ओ सुबुर से समस्त परिवार सरजुमिसर कुंदन पांडे रघुनाथ श्यामलाल और तुलसी बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि फ्राइडे 14 अगस्त को क्वार्ट ओवर फाइव शाम को 85 साल की उम्र में इन द लीफ तेज फन फैफ तख्तियार दो बेटियां शकुंतला शर्मिला के पिता दो दामाद राजन या राज रौफ कुंदन पांडे और हेमंत रघुनाथ का ससुर चार बेटे शोर्स या बॉय के भी कह सकते हैं अर्नोल्ड रामोन रोमेयो सरजुमिसर का पिता 20 नाती नातिन पोता पोतिन पर नाती पर नातिन नदमाद और नदपतो का आजा पर आजा नाना पर नाना अजवा ससुर और ननवा ससुर गीता श्यामलाल उषा तुलसी अरुणा अयोध्या का ससुर पत्नी इंद्रावती सरजुमिसर का पति स्वर्गीय बेटा हैंक जयराज का पिता सेलंत ओ सुबुर के रहने वाला श्रीमान पुण्य आत्मा कोनराद सिंबुदत्त सरजुमिसर का स्वर्गवास हो गया है उनके निवास स्थान पर। आप उन्हें ज्योतिष के नाम से भी जानते थे और सूरीनाम में वेलखलीखन के निवासी था और साथ ही साथ वहाँ वेलखलीखन का स्कूल का लेरार। शव का दर्शन आप कर सकते हैं एथफार्ट सेंट्रम हेथ सेव सलंत ननसन बान कंत वेख्तवी खुश में दिनसदक 18 अगस्त को 17 यूर तौर क्वार्ट फोर सेस और वनसदक को 19 अगस्त को हल्फ सेफ से क्वार्ट ओवर सेफ तक। डाकरिया डोंदरदक 20 अगस्त शाम 2 बजे ननसन बान कंत वेख्तवी खुश सेलंत में डाकरिया किया जाएगा। बैठक घर पर नहीं है और जानकारी के लिए तार का नंबर दिया गया है 0 सेस 22 24 12:31.

सानी रेडियो सभी परिवार सरजू मिसेर, सभी परिवार रघुनाथ कुंदन पांडे तुलसी श्यामलाल सरजू मिसेर और गंगा को शोक संवेदना प्रकट कर रहा है। सहन शक्ति के लिए प्रार्थना किया जा रहा है।

द्वारा पावन हिंदुस्तानी राज्य सभी परिवार को सुख समृद्धि प्रदान कर रहा है। फिर दीर्घ से ली दिया सभी सुनने वालों से निवेदन है कि ये खबर को और आगे तक पहुंचा देने को। यहाँ तक था ये मृत्यु समाचार। ये मृत्यु समाचार आइंदा

दोस्तों हम चलते हैं एक मस्त भरी गाना के ओर, लता जी और राजकुमार। और इस फिल्म बहुत पुराना फिल्म है, फिल्म साधना का ये गाना है। लता जी इसमें यानी कि इस गाना को गाया है दोस्तों, और इस गाना आओ मिलकर सुना जाए। कुछ पुराने गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे।

बसी हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, ये एक बहुत मस्त भरी पुराना गाना है दोस्तों, और ये है लता जी इसका गाना, इस फिल्म में यानी कि इस गाना को गाया है। और आगे को हम अगला गाना की ओर बढ़ते हैं, और आज हम आप लोग को मस्त भरी गाना से, और जैसे हर हर प्रोग्राम में चलाते हैं, आज भी हम चलाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम और आगे चला जाएं, और ये भी एक पुराना गाना है, सब कुछ सीखा है हमने, मैं सिर्फ एक ही बात नहीं सीखा है, और वो क्या है भैया, हम तो है अनारी, और ये अगर अनारी होगा तो क्या सीखेंगे, ये बात हम नहीं कहते हैं, मुकेश जी कहते हैं, आओ मिलकर सुना जाए।

0: सब कुछ सीखा हमने और सिर्फ एक बात नहीं सीखा है तो वो है होशियारी। दोस्तों होशियारी, हम अपना प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं और मस्त भरी पुराने गाने से आप लोग को आज हम फिर सेवा करेंगे हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। और कहते हैं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग तो तुम भी गुनगुनाने लगोगे। तो हमारा आपसे यही बात है कि जो गाना हम यहां पर चलाने जाते हैं रवि जी की है फिल्म जो इसमें काम किए है वो शमी कपूर आशा परेक ने। और अगर आप ये गाना सुनेंगे तो मुझे यही विश्वास है, यही गारंटी है कि आप भी गुनगुनाने लगेंगे। मुझे यही उम्मीद है दोस्तों। तो आओ मिल के सुना जाए कि जॉनी कौन गाना द्राई करे कि हमें भी बैठ के गुनगुनाने पड़ेगे। तो आओ सुना जाए।
1: तुमने मुझसे यही सवाल किया था
2: क्या?
1: क्या मैं तुम्हें भूल जाऊं तो?
2: तुमने क्या जवाब दिया?

और जो तुम मुझे भुला ना पाओगे जब तुम मुझको देखोगे तो कैसे आप आएंगे। ये बात मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाई है दोस्तों, अपना प्रोग्राम को हम और आगे को बढ़ाते हैं और आज भी आप लोग के मस्त भरी पुराने गाना से हम आज आप लोग को सेवा करेंगे। हम चलते हैं, राज कपूर का फिल्म है और मुकेश जी ये गाना को गाए हैं।

उस देश के वासी हम हैं, और वो देश कौन है दोस्तों, जहाँ पे मुकेश रहते थे, और वो है गंगा जहाँ पर बहते हैं, और हम उर देश के वासी है दोस्तों, सूरीनाम के देश के वासी तो हम सब है, और मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाए हैं दोस्तों। जो अगर जो आप मुकेश की सुन चुके होंगे तो हम चलते हैं रफ़ी जी के गाना भी सुनना चाहिए, और वो है इशारों इशारों में क्या होता है, इशारों इशारों में तो कभी दिल चला जाता है, नहीं दिल दिल को चुरा लेता है, दोनों होता है ना। तो आओ मिलके सुना जाए मोहम्मद रफी जी की आवाज।

इशारों इशारों में दिल देने वाले परमान श्री मोहम्मद रफी की आवाज में इस गाना के आपने सुना है और आशा भोसले की आवाज में दोस्तों। और अगर रफी जी जब पिक सुनाया है तो हम तुरंत जाते करोड़ों दिल को चुराने वाले और वो है मुकेश। फिल्म का नाम है श्री 420 नेकंती होंदित 515 तक का ये फिल्म है जिसमें राज कपूर और नरगिस ने काम किया है दोस्तों। आओ मिलके सुना जाए।

और फिल्म श्री 420 का ये गाना हमने निकाल कर आप लोग को सुना दिए है। नई खतीर 55 का फिल्म राजकुमार और नरगिस का इस गाने में गाया है मुकेश जी और लता जी। दोस्तों हम बढ़ते हैं फिर अगला गाना की ओर, वो है परमाशी मोहम्मद रफी का ये गाना है और इसमें काम किया है शायरा बानो राजेंद्र कुमार। फिल्म का नाम है अरमान, फिल्म के नाम है अरमान और ये गाना क्या है धोरो मस्त भरी पुराने गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे। मिशिक है शंकर जय किशन का और इस गाना को लिखा है हसर जयपुर का ये गाना है और आओ मिलकर सुना जाए।

0: गाना।
1: तुम्हारी हर बांस पे है मुझे बहुत नाज दोस्तों, शेरा बानू राजेंद्र कुमार ने फिल्म अरमान में काम किया है और परमाशी मोहम्मद रफी जी के गाना है हसर जयपुर के साथ में। और हम और आगे को चलते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर हमारे दोस्तों, और ये फिल्म का नाम है और देवानंद उषा किरण फिल्म के नाम है पतिता का ये फिल्म है, दादा हेमंत कुमार और दीदी लजा जी के आवाज में इस गाना को आओ सुनिए।

दादा हेमंत जी के आवाज में आप लोगों इस गाना को सुना है और एक मस्त भरी रोमांटिक हिंदी सॉन्ग है दोस्तों। इसमें काम किया है देवानंद जी और उषा किरण ने। फिल्म का नाम है पतिता दोस्तों। और उसके बाद हम चलते हैं और एक गाना के ओर और वो भी है फिल्म के नाम है, ये भी एक बहुत पुराना फिल्म है, अलबेला का ये गाना है। हमारे दोस्तों लता जी इस फिल्म में इस गाना को गाया है और इसमें भगवान ने बहुत कमाल किया है दोस्तों। आओ मिल के सुना जाए ये गाना क्या है भाई, बहुत पुराना गाना है ये, और सुना जाए।

भोली सूरत दिल के खोटे, और नाम बहुत बड़ा है कितरूर कितरी को, लेकिन कर्म बहुत छोटे है दोस्तों। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े हैं बाकी दिल से बहुत खोटे हैं हमारे दोस्तों। और हमारे दोस्तों, और ये गाना को जिसके सपने में हम रोज आते हैं, और महेंद्र कुमार और लता जी बताए गए हैं, नई खंती सेफन तक का ये गाना है, आओ मिल के सुना जाए।

जिसके सपने हमें रोज आते रहे और गुना गुनगुनाते रहे, वो कहती कि क्या तू ही रह ले भैया। और जो गाना अब हम आप लोग को सुनाएंगे ये है गोरी तेरी नैनों में हम बस गए हैं, हम बस गए हैं। गोविंदा करिश्मा का ये फिल्म है और ये गाना को गाया है हमारा कुमार शानू।

0: दोस्तों, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते हैं।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जांच, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फाहुन के सुनने वालों को हमारा राम राम, नमस्कार, प्यार भरी अदाब, सस्त्रीय काले। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश की समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा ये मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

तो दोस्तों हम तुरंत चलते हैं और कहां चलते हैं, हम चलते हैं सूरीनाम की ओर और फेहापेई की ओर। फेहापेई की ओर यानी कि वहां पर अब फेहापेई की बस्ती जो है हमारे जनता जोर तोर से काम कर रहे हैं और वो कर रहे हैं यानी कि फोर सीटर चुनने को। तो इसके बारे में फेहापेई का पार्लियामेंटेरियन है और वो है मुफराव कृष्णा मथुरा। वो बोले है इस बर्रई थे फोर सीटर्स का फंड फेहापेई तो ओवरवेगन इन दिन से वनuit de partij en verschillende structuren wordt gevraagd zich kandidaat te stellen। बोले उप बरेत है फोरसीटरशिप लेवे के। बोले जब ओके फेहापेई के कैंडिडेट बोले स्टेम करी तब वन अप स्टेम होएगा कि के फोरसीटर बनी फेहापेई के। बोले बलंगरेक हैगा कि बोले जितना स्ट्रक्चरन है एंड ब्रूप दून बोले जालिक है ओवरवेगन दैट जालिक ना देंगन। इस बात मथुरा बोली से और मथुरा बोले है फोलखंड यार आने वाला साल में मई में फेहापेई के बस्तूर फॉर किसिंग होगा मई महीना में आने वाला साल 2027 में हुई। तो बोले है इर्दर दित यार बोले और फोरसीटर तो लोन जानो है चांस तो कि उसका दी वॉज प्लॉसिंग ऊपर लेडे में से और बताई गई है जहाँ पे हम लोग के फोरसीटर्स का वारनेमस तैयलक ग्लेन उलर्स आन ते वेजन आज फोरसीटर और मथुरा खलूफ एर इन इधर खफाल वेल कि फेहापेई एगो जबरदस्त एगो स्टर्कर लेडर सबन किसे करेगा। और बोले हैगा फेहापेई बोले बहुत स्टेबल है स्टर्क हैगा। बोले आज वेर अ स्टर्कर लेडर सुलन हेवन hoofdbestuur betaalde VHP'ke ke, ki bole 76 jaar VHP'ke bestand hai a bole VHP bole doormaak in de samenleving bole narm garam ooch neech bole sab hum log mee maak kar chukli baati a bole VHP uiteindelijk ego sterker terugkom bole phin se terug aai ekar bare mein under voorzitter jo hai VHP'ke Asis Kumar Gayadin u bole hega binnen de partij se दी बे हम अंदरिंगन कि बोले हम भी फोरसीटर्स का बोले कि कैंडिडेट अनस्टेल कर कोई बोले तंसे ये सब कोई हमें किस करी तब वार्डोर है बेसिक इज अ खुद टीम तो सुकन फॉर दैट है इवेंटुअल सो अ स्टॉप सेट। और हॉफर्स्टर्स के लेते महेंद्र गया दीन उस सफा बोले है बोले हम यश मांगेला कि पुराना मिनिस्टर जो है गणेश कुमार कन्हई बोले आउस अनखस्किक्त कैंडिडेट बोले हुए पार्टी लीडर के। और बोले हैगा फॉल्कस हम बस के कन्हई ओवर अ खुद सेफी kent hij de VHP van binnenuit en zou zijn verkiezing geen slechte keuze zijn. Toen ik er bare mee op de voorzitterschap mee mee hoe ga verkiezing VHP ke op ke voorzitter benega en bole hega het volk en dat heb ik mijn hele leven gedaan bole 45 jaren dien ik samenleven al en ik zal blijven dienen vanuit elke functie. और ये बात बोले है मथुरा बोले है उत्तराधीन से बोले हम बाटी। तो ये बातचीत है फेहापेई के अंतविकलिंग के बारे में आप लोग को हम बोली थोड़ा से बता दे भैया सूरीनाम देश में यहाँ तो हॉलैंड में जगह जगह है सूरीनाम देश में तो भी वहाँ पर भैया फ्लिट्स पार्लर लगल है चारों बगल और फ्लिट्स पार्लर भैया जाने कमरा मस्त है एगो ओ तो जाए के कमरा मस्त हुए में मार दी भैया ये बात तो कभी न्यूज में हम ना पढ़ ली है पाल तो काटे है बाकी जहाँ पे कैमरा धरल है मस्तवा वही में जाए के एगो ओ तो भिड़ा दी भैया सेफ्टी सिटी कैमरा मास बस्तू द खवान एंड फूड तो एक इस नतीलक स्वार बस खादक में से एगो बहुत सिंग भैल है
अब तावे 16 तारीख अगस्तस के अतवार के एक सेफ सिटीज कैमरा मस्त है अंतन द्रख्तर वेग बोनी स्ट्रीट में ओए मेगो 48 यार के आदमी जाय के बिको स्ट्रीट से निकले सेंट्रम से जाय के कैमरा मस्त में मार दे भैया तो ओके खा तो अब बवेस खोजे के ना है वत हुआ पे सब लिखल है अप लेवल है कि कैसे भैया जाए के और भीड़ का आंधी से अपन ओ तो इन से देखा अरे नहीं भाई ये बातचीत हो रहा है हमारा सुरीनाम पीके के तुलन जाने भैया अक्तिफे से पीके चल गए पहले रहा एनडीपी में एनडीपी से चल गए हैगा अब बप में अब बड़ा बात बोले हैं सिमोन के रखेरिंग सिमोन के बोले उस सब कुछ ना देसवा बोले बनाई पाई से कई हार्ड बोल से रखीन जिमोन के बोले खाली पोप के यहाँ से हुआ घसकावे है जाने तो जैसे स्काकबोर्ड पे बहुत बोले रहा ऐसे बोले खाली पोप के यहाँ से हुआ घसकावे है अली पोप सेंशन विश्व फॉर द रेस्ट बोले उस सब देशों में कुछ ना करे हैं रखे रिंग रिसलान के और सिमोन के बोले हैं एक बरिस उस सब हो गए है और बोले एक कोचित नफरान द नौलिक्स बोले हम लोग अपर पटमुनी में मेरक कर पाइला बोले रास्ता रास्ता सफा हुए है दाम उम तरी बने हैं बोले दस वेल नि शख बोले उल्लांटी के काम ही करे के बोले बाकी ओंतविकलिंग देसुआ में एक को बुन न लाई से बोले फ्रॉइड खांग जोन हम लोग के सलार से दुकान में जोन प्राइस से बस्तान द सीकर है थे कंसर्न फॉर ब्यूरोक्रेसी नाम ये daar ziet hij volgens eigen zeggen wel geen wenselijke verbetering. तो पीके एकर बारे में बोले दोस्तों बोले हैं रखेरिंग बोले कुछ ना करे है बोले स्टेफर चर्च फॉर विसलन अंदर पॉलिटिकल फोक्यूरेंस सेटर ऑफ द पोस्ट इंटरवेल बोले वही पुराना कल्चर बोले वही मशीनिया चले है बोले बवेर करे है बोले पॉलिटिसी एंड पॉलिटिक्स स्पॉन्सर टेन खुद कॉमन इन प्लेटफॉर्म रेक्स्ट्रीज द बफोल्किंग मां बोले इको फरंदरिंग ना है Coalitie krijgt langs Piqué, stelde minister in praktijk. Eerst partijbelangen, bole appen partijbelangen, bole regering wakker he. Maar bole janta ke belang me bole usap huana baitale. Pahle okar partij ke admi ke chahin. यारे की फोर्डील बनावे के द खसंत है सड़क एंड अंडरवेज बोले हैगा जेनिफर सिमोंस के बोले है ग्रोथ टेस्टन मिशी काबा फॉर्क्स फसंत है के जो मिनिस्टर हैं सेल्फ एन फॉर द ग्रोस्ट ब्लंडर बार रखेरिंग के भैया मिशी काबा के जो पास्टर है और नाचत आयल है उसेर में और के सबन मिनिस्टर डायरेक्ट बना दी से भैया अब बोले एक वार्ता ना होकर बोले अंडरवेज फॉलोस gezondheid, gezondheidszorg, bolle niet stevig op orde worden gebracht, bolle hij spreekt daarvan van een valse start. Simon Desloot moet reshuffle, bolle zelf Simons ke jahe nikar jahe ke, oke jahe zelf reshuffle hoi ke, Piqué bolle he, bolle regering zich ek brisse bolle usse buitel he, au bolle beer beer appen probleem wa ghaskawe he, vorige regering jahe ke luka he ke usse चीज करी से बोले हम लोग जो एरफ कर ली बोले वही के से नरी दरी ने इस सिंपल वी कंपाइन फूड एंड बलूफ दैट बेहतर टू डून वेट फॉर ऑफ वेल का प्रॉब्लम एर लिखन द किसर्स हैव द न्यू मार्क्ट हैव द यूएस के स्कोफन ऑन द पेन होप ऑफ द रूमन अखतरा ब्लेवन फर्टेलर वार है अलमाल फॉल्ट वाज बाय द फोर्थ रखेरिंग और घस कावे की संतो की ब्रिस्वाई के रखेरिंग प्रॉब्लम हुआ करी से और बोले तू जल Lele politieke, dan moet je toch weten wat je allemaal staat te doen, Jano, bijna. और फुटबॉलर्स गैला भैया नीदरलैंड से और देश सुरीनाम में और सबके मिलल रहा डायस्पोरा के सुरीनाम से पासपोर्ट मिलल रहा तो यहाँ पासपोर्ट क्वेश्चन फॉर द डायस्पोरा फुटबॉल कान दिस बे स्टार्स बसलेट खरीगल्ड वार्डन वन सिमोन बोले पासपोर्ट तो सब इंटरेक्ट चाहिए हुए के और बोले बलवा तो दोन हो गए तो ये सब खिलवाड़ करे है पासपोर्ट से भैया बोले हु फॉर द वेट नेशनल है
overheid. Bolle 14 augustus keer 2026 tijdens vervolgbespreking. Commissie Naturalisatie van Nationale Assemblée DNA. Ik erbaar mee wat ja heen. Bolle de SVB is gevraagd de voorgestelde wijziging te verwerken zodat het concept van de wet op korte termijn kan worden ingediend. Dus toe. De jebante voetballerske barimie.

तो दोस्तों अब देखो, एक फिल्म प्रोड्यूसेंट है जिकर नाम है लेस्ली यार फिल्म रोडनी लाइसनर तो ये है एगो नीदरलैंड से फिल्म प्रोड्यूसेंट है और इस सूरीनाम देश में गया और शनिवार से ये गुम हो गया मैं से इस फरमेश सातरख आवन से एक कर पता ना है ये कहाँ है। उसके परिवार उस सबके दोस्तों जो है बोले फ्रिंडन एंड आंद्र बर्त्रोकन हैवन सिंस रात के ओके सब ना पाई से द्रिंगन बरूप करेगा ओम आन है पब्लिक ओम ऐट कैक नारदमान के वो कहाँ है दोस्तों ओके सब खोजे है बफोन लाइसनी सातरदा के रात के शर्मा का गए लहा फोर अन वर्क ओफल है और बोले दैट इज द लास्ट प्लग वार है फोर सो फेयर बकेंट इसके जीन ओकर बात में बोलो कर टेलीफोन है कोई ना उठा ना उठावे है बोले सौंदर सुतान ओकर औरत लड़कन फैमिली कोड़ी का सब ओके खोजे है। तो दोस्तों अगर ये आपको मालूम है तो आप इसके बारे में जरूर जरूर जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए इस सिपाही से। तो ये बात है एगो नीदरलैंड से फिल्म प्रोड्यूसेंट के बारे में हम आपको बताते हैं। एक लाश मिला है दोस्तों, एक लेक मिला है या बता रहा है ब्रैनन डालवेख में एगो मलाई के नाम है दोस्तों 58 यार का रामोन केरतो दी क्रोमो तो एक लाश लेक मिलल है सवेरे भैया अबैत ही आन खतरोखन ओकर भाई गए लेते कि से केरतो दी क्रोमो सोंदाख नो खसीन अबे अतवार के ओके बोले हम दिखली है अब ओकर लाश जाए के लेक मिलल है और बोले हैगा अर्श had twijfels over een natuurlijke doodstraf, doodoorzaak. Bolle hij constateerde onder meer blauwe plekken op het lichaam en bloed dat uit de neus kwam. Terwijl een natuurlijke dood na hij, ook er naak met zich groen bijl hij, en ook er dehi met blauwe plekken hij, de ikker banen mee. Forensische opsporingdienst in schakel wel hij. Bij de onderzoek werden vooralsnog bolle in braak garwa met nabijl hij. Bolle letsel op het lichaam zijn vastgesteld. Of bolle beslag genomen. De zaak is over bij te patamilen hij. एक नतुरलक इदोच से नमरल है। अब देखो भैया को नवा देना खबाऊ है। हाँ इ नौका देना खबाऊ है। इ है भैया और नेशनल असेंबली के एगो मीडियो हैंक आरोन स्ट्रांट में वो नवा देना खबाऊ है न्यू देना खबाऊ है। तो हूँ आप एगो निगम फिर तक यार के आदमी काम करत रहा।

तो दोस्तों इसी सॉन्ग से आज के समाचार को हम और समाप्त करते हैं। एक लास्ट ब्रेक थे दोस्तों, फीरन देर तक बूतस हो गया है, फीरन देर तक बूतस मिलल है फ्राख्त वाहन के अपस्को तू कंट्रोलर करे ओ टूरिंग कार्ड के नीलांग के बांचित हुए है रेक्स वांस स्थान सोमार के फीरन देर तक को बूटू लिखे से फ्राख वाहन के और टूरिंग कार्ड के जो मेर वीडियो ब्रुख पे चलाए रहा। Het was de eerste dag dat motoragenten van de politie controleerden op het verbod op zwaar verkeer te handhaven. Over kiepen ze nam mag hij zwaar verkeer jijke. En is op chalai raha motoragenten sabke pakli se bhaiya. Bole hij ga touring scars over de verzwakte brug reden. Als de chauffeur werd betrapt, leiden agenten en een voertuig van de weg af naar inspecteur van Rijkswaters. Staat. Dit schreven met een boete van 500 euro. Ja, hoe direct ligt die he? Toh, hamare dosto, yahan tak tha hamara dis aur vidis ki samachar jo aap loon suna hai. Yahi aasha umeed se ki aapko hamara समाचार जरूर अच्छा लगा होगा। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आप सबको हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरी अदाब और अदाब सलाम नमस्ते।

और आपकिया जाने से हमारा भी यहाँ पर मन बहुत चाहते हैं दोस्तों, और हम इस प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं और कहते हैं सिखवा करने से गए थे और इबादत से हो गई, सिखवा करने गए थे और इबादत से हो गई, तुझे भूलने की जिद थी मगर तेरी आदत से हो गई। और दोस्तों आज हम आप लोग को और तक सेफन तक एंड नेहन तक का कुछ गाना सुनाएंगे दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए उदित नारायण एंड अलका याग्निक।

0: आई मेरे, और क्या क्या आप लोग सुनते हैं, अलका और उदित नारायण का ये सॉन्ग है दोस्तों। और कहते हैं कि देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम में, देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, हम होश में आने वाले थी कि तुम फिर से मुस्कुरा बैठे। नोकमाल्स नोकीर बेस्टल इस्त्रात, देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, हम होश में आने वाले थी कि तुम फिर से मुस्कुरा बैठे। दोस्तों तो आज आप लोग को हम कुछ शायर और शायरी की और मोहब्बत भरी लवली सॉन्ग्स आप लोग को लिए हम चलाएंगे। और एक और हो जाए, मरे तो लाखों होंगे तुझ पर, मरते तो लाखों होगे तुझ पर, मैं तो तेरे साथ जीना चाहता हूँ। दोस्तों और चला जाए और ये गाना को और कि पूछो जरा पूछो।
1: मुझे क्या हुआ है?

और तुमसे ये दिल लगाने की सजा है। दोस्तों राजा हिंदुस्तानी 1966 भैया नहीं खनती ससन नहीं खन तक का ये गाना है। और पूछो जरा पूछो अलका और कुमार शानू का, आज हम आप लोग को कुछ गीत और सुनाएंगे हमारे प्यारे दोस्तों और मोहब्बत भरी सॉन्ग समाज आप लोग को और सुनाते ही रहेंगे। हाल ऐसा है मेरा कि तेरा ही गले लगकर, हाल ऐसा है मेरा कि तेरा ही गले लगकर तेरे ही शिकायत करनी है तुझसे। और दोस्तों प्यार भरी और हम आज आप लोग को सॉन्ग सुनाते ही रहेंगे हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों। और शायरी के और कुछ शायर के बातचीत भी, कुछ शायरी भी आप लोग को हम सुनाते ही रहेंगे हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों। और कहते हैं कि यहाँ पर अलका फीना गई है दोस्तों और उदित नारायण।

और दोस्तों, आप जहां भी हो, चाहे जौन देश में हो, हमारा प्यार आपके पास पहुंचे। और वो कहते हैं, वो जवाब मांगती है कि मुझे भूल तो नहीं जाओगी। समझ गया दोस्तों, एक कहते हैं कि वो जवाब मांगती है कि मुझे भूल तो नहीं जाऊंगी। जवाब मैं क्या दूं दोस्तों, जब सवाल ही पैदा नहीं होता है। समझ गए ना हमारे प्यारे दोस्तों, कि ये कहते हैं कि वो जवाब मांगती है कि मुझे भूल तो नहीं जाओगी, जवाब मैं क्या दूं जब सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमारे प्यारे दोस्तों, ये बात ही कि कहते हैं कि अपनों के बीच बेगाने हो गए हैं, अपनों के बीच बेगाने हो गए हैं, प्यार की लंबी अनजाने हो गए हैं, जहां पर फूल खिलते हैं कभी आज वहीं पर वीरान हो गए हैं दोस्तों। और ये सब बात कब होता है, जब प्यार में टकरार होता है। तो वो कहते हैं, अपनों के बीच बेगाने हो गए, प्यार के लम्बे अनजाने हो गए, जहां पर फूल खिलते थे कभी आज वहीं पर वीरान हो गए है दोस्तों। और हम चलते हैं एक गीत की ओर। आ जाना, और फिल्म के नाम है कूली नंबर 1। भैया मिलकर सुना जाए।

और दोस्तों अपना प्रोग्राम को हम और आगे को बढ़ाते हैं और कुछ शायरी और शायरी हमारा आप लोग को लिए और हम कुछ बना कर लाए हैं कि कहते हैं मोहब्बत का एहसास हमारे दोस्तों हमारे चाहने वाले हमारे प्यारे प्यारे हमारे लवली लवली लोग और कहते हैं कि मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों को हुआ था। मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने किया था और मुझे हुआ था। समझ गए ना दोस्तों कि मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने मोहब्बत किया था और मुझे हुआ था। दोस्तों ये तो बात भी होता है ना प्यार में कभी कभी, और प्यार में ये भी होता है दोस्तों कि रूह की जगह तुम होते मेरे जिस्में, रूह की जगह तुम होते मेरे जिस्में, जब तुम छोड़ कर जाते तो हम मर जाते। और हम चलते हैं और एक प्यार भरी गीत की ओर, आओ मिलकर सुना जाए।

प्यारे दोस्तों, हम आप लोग को प्यार भरी गाना चलाएंगे और आगे का प्रोग्राम हम बढ़ाते हैं फॉर ओनली द लवर्स के लिए। इस गाना को और शायरी हम यहां से चलाते हैं, ओनली लवर्स दोस्तों। और हम यह कहते हैं कि होशे हालात पे कबूल तो कर लिया मैंने, होशे हालात पे कबूल तो कर लिया मैंने, उन्हें देखकर फिर से होश खो गए तो मैं क्या करूं दोस्तों। कि होशे हालात में कबूल तो कर लिया मैंने, उनके देखकर फिर होश खो गए तो क्या करूं हमारे दोस्तों। मुझे नहीं मालूम है प्यारे लोगों, मुझे नहीं मालूम है वो पहली बार कब अच्छा लगा, मुझे मालूम नहीं है कि पहली बार वो मुझे कब अच्छा लगा, मगर उसके बाद कभी बुरा भी नहीं लगा हमारे दोस्तों। और हम चलते हैं और एक गीत की ओर, कहते हैं मुझे जीने नहीं देते हैं याद तेरे।

और ये याद तेरी दोस्तों, और आज हम आप लोग को श्री फॉर द लवर्स के लिए कुछ शायरी यहाँ पर हम और आपको सुनाते हैं कि कहते हैं कि प्यार वो नहीं, प्यार वो नहीं हमारे प्यारे दोस्तों, प्यार वो नहीं जो हासिल करने के लिए कुछ भी करवा दे, प्यार वो नहीं जो हासिल करने के लिए कुछ भी करवा दे, प्यार वो है जो उसकी खुशी के लिए अपना अरमान छोड़ दे। यामें से प्यार वो नहीं है, प्यार वो नहीं है जो हासिल करने के लिए कुछ भी करवा दे, प्यार सिर्फ वो है जो उसकी खुशी के लिए अपना अरमान छोड़ दे। फॉर द लवर्स। और दूसरा है मुस्कुराते हैं लब, मुस्कुराते हैं लब आंखों में नमी है, मुस्कुराते हैं लब आंखों में नमी है, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास, बस एक आपके कमी है दोस्तों, आपकी कमी है। और सुना जाए अब क्या है,

दीवाना और मैं तेरा दीवाना। दोस्तों और यहाँ से कुछ प्यार भरी शायरी आप सबके लिए हम यहाँ से चलाते हैं। कभी कभी लोग जो है वो कहते हैं कि वो प्यार करते हैं, लेकिन उसका उसका एहसास उसको नहीं होता है कि अब क्या होगा और आगे को क्या होता है। तो यहाँ से हम बताते हैं कि दिल कहता है कि तुमसे बहुत बातें करूं, दिल कहता है कि तुमसे बहुत बातें करूं, पर डर है इस बात का, डर है इस बात का कि तुम्हें कोई बात गलत ना लग जाए। कभी कभी होता है दोस्तों कि बात करने तो चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि कहीं हमारा बात इसको कुछ गलत ना लग जाए, तो वो बात करने में घबराते हैं। कि दिल कहता है कि तुमसे बहुत बातें करूं, पर डर है इस बात का कि तुम्हें कोई बात गलत ना लग जाए। और दूसरा है दोस्तों, हम इश्क के वो मुकाम पर खड़े हैं जहां दिल किसी और को चाहने चाहे तो गुनाह लगते हैं। दोस्तों जब किसी से इतना प्यार हो जाते हैं तो जब किसी और आपको देखते हैं तो, और या आप किसी को देखते हैं तो अपने आप को आपको शोक फूल करने लगते हैं कि हम इश्क में वो मुकाम पर खड़े हैं जहां दिल किसी और को चाहने तो गुनाह लगते हैं। दोस्तों हम चलते हैं एक प्यार भरी गीत की ओर।

0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio. Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: एक बहुत सा सुंदर गीत हम चुनकर रखे हैं आप सभी के वास्ते जॉय शिव प्रसाद और रायन मनोरज जी की आवाज़ में आपके आ जाने से।

मेरी सनम तेरा खत मिला भी आप सुन रहे थे धीरज लाला राम और वादिका रामसुकुल जी की आवाज़ में। रायन मनोरथ आ रहे हैं प्रोग्राम में, मैं प्यार का दीवाना।

रायन मनोरथ जी से आप अभी सुन रहे थे। यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे, तुमसे एक मैशअप भी आप सुन रहे थे सुनने वालों। दविंदर सिंह सिवनाथ और सविता सिंह प्रोग्राम में आ रहे हैं, दो साथी जीवन के।

अभी आप सुन रहे थे दो साथी जीवन के, दविंदर सिंह सिवनाथ के साथ में सविता सिंह आपको सुनाने वाले थे। इंद्रनील रॉय और प्रशांत रामचेतन आ रहे हैं प्रोग्राम में एक मेदली के साथ।

रोनील रॉय और प्रशांत रामचंद्रन की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये मैथिली सॉन्ग जब जब बाहर आए। अब तो है तुमसे यानी एक मैथिली आप सुनेंगे काश बी की आवाज़ में।

काश बी की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये मैथिली सॉन्ग। रायन मनोरथ और जॉयस शिव प्रसाद प्रोग्राम में आ रहे हैं आपके आ जाने से।

जय शिव प्रसाद और रायन मनोरथ की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों। उमर वाहिद हुसैन आ रहे हैं प्रोग्राम में। घटा छा गई है

जाना कहाँ है अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी चलते चलते से हमने पेश किया है बप्पीडा और यानी स्वर्गीय बप्पीडा और श्लोक्षणा पंडित जी आपको सुनाने वाले थे। कांची रे प्रीत मेरी साची रुक जा न जाओ दिल तोड़ के फ्रॉम द मूवी हरे रामा हरे कृष्णा।

कांची रे काची रे, प्रीच मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। भी आप सुन रहे थे नी सुल्ताना रे, प्यार भरा मौसम आया।

0: अभी आप सुन रहे थे लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे नी सुल्ताना रे प्यार भरा मौसम आया। कजरा लगा के गजरा सजा के बिजली गिरा के जइयो ना किशोरा के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं।
1: चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को

किशोर डा और लता जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे कजरा लगा के गजरा सजा के बिजली गिरा के जइयो ना। जरा सा हम देखें जी हाँ किशोडा के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं सुन चंपा सुन तारा। और ये गीत हम पेश करते हैं इस एक ख़ास व्यक्ति के वास्ते और वो है शर्ली जी। जबकि हमारे प्रोग्राम को सुन रही है तो शर्ली आप ही के नाम हम ये गीत चलाते हैं।

0: सुन चंपा सुन तारा, अभी आप सुन रहे थे किशोर दा और लता जी की आवाज़ में। लता जी प्रोग्राम में आ रहे हैं, एक बार फिर से सुनने वालों। ए बाबू ले लो नारियल पानी।
1: ले लो ना नारियल।

अभी आप सुन रहे थे ये लो रे ले लो बाबू पी लो नारियल पानी। और नारियल पानी के बाद ये होना चाहिए।

वही देता वही लेता उसी का है संसार, एक आता एक जाता ये जग का है व्यवहार। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा मृत्यु समाचार पुकारा जा रहा है, ध्यान दीजिए या गौर फरमाइए परिवार के दो मृत्यु समाचार है कार्यक्रम में। Den Haag, Tegelen, Limburg, Leiderdorp और Zeeland से परिवार गंगा और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि शुक्रवार 14 अगस्त को शाम 5:30 बजे यानी 7:15 पर 85 साल के आयु में इंदलीफ तहत फन फैफन तख्त यार दो सार चंद्रसेन गंगा और नन कुमार गंगा का बहनोई, कारला गिरधारी का नंदोई, निर्मला गीता प्रवीण और रेखा का फुफ्फा, 17 लड़कों का नाना परनाना और फुफुआ ससुर और ननवा ससुर, लिम्बेरुक तेखलन से सुरेन सुनीता धुरेन मनोज जयदेव आनंद का मौसा, 30 लड़कन यानी तीर्थ केंद्रन, आजा नाना पर नाना मौसवा ससुर अजवा ससुर और ननवा ससुर, बड़की सविता गंगा की छोटकू, लिम्बेरुक से बहन हम लोगों की बहन आनी इंद्रावती सरजू मिश्र गंगा के पति, बेटा स्वर्गीय हैंक जयराज का पिता, सेलंत ओ सुबेरख के रहने वाला श्रीमान पुण्य आत्मा कोंदराज सिंबुदत्त सरजू मिश्र का स्वर्गवास हो गया है उनके निवास स्थान पर। आप उन्हें ज्योतिष के नाम से भी जानते थे और सूरीनाम में वेलखलेखन के निवासी था और वेलखलेखन स्कूल का लेरार था। ऐतफात यानी कि शव का दर्शन आप कर सकते हैं हेल्सेवस लंत में ननसन बान कंत व्यक्तवेई खुश में। हम दोहराते हैं हेल्सेवस लंत ननसन बान कंत व्यक्तवेई खुश में। अर्थी को आप देख सकते हैं 18 अगस्त को 5 बजे से 5:45 बजे तक 7:15 तत्कवर्थ फोर सेस, और अगले दिन 9:15 अगस्त को हल्फ सेफ से क्वर्थ ओफर सेफ तक हम दोहरा रहे हैं। देखने का अवसर है 8:15 अगस्त 7:15 तक 7:45 यानी 5 से क्वर्थ फोर सेस तक, और वंसदाग 9:15 अगस्त को हल्फ सेफ से क्वर्थ ओफर सेफ तक। आने वाला दोंदरदाग 20 अगस्त शाम 2 बजे ननसन बान कंत व्यक्तवे के क्रेमेटोरियम में दाह क्रिया किया जाएगा खुश में। जानकारी के लिए तार का नंबर दिया गया है 06 42 41 31। खबर को हम दोहरा रहे हैं, दनहाग तेखनन लिम्बेरुक लेदरदोरप सेलंत से समस्त परिवार गंगा और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं के दो सार चंद्रसेन गंगा और नन कुमार गंगा का बहनोई, कारला गिरधारी का नंदोई, निर्मला गीता प्रवीण और रेखा का फुफ्फा, 17 लड़कों का नाना परनाना और फुफ्फा ससुर और ननवा ससुर, लिम्बेरुक तेखलन से सुरेन सुनीता धुरेन मनोज जयदेव आनंद का मौसा, 30 लड़कों का आजा नाना पर नाना मौसवा ससुर अजवा ससुर और ननवा ससुर, बड़की सविता गंगा के छोटकू, आनी इंद्रावती सरजू मिश्र गंगा के पति, बेटा स्वर्गीय हैंक जयराज का पिता,
सेलांत के निवासी और सुबुरुख के निवासी श्रीमान पुण्य आत्मा कोनराज सिंह बुद्धत का स्वर्गवास हो गया है 85 साल की उम्र में बीते हुए शुक्रवार 14 अगस्त 5 को, जिन्हें आप ज्योतिष के नाम से भी जानते थे और वेल्खलीकन में सूरीनाम में उनका निवासी था वहाँ का और वहाँ का स्कूल का लेरार भी था। शव को आप देख सकते हैं हेत सेव सलंत ननसन बान कंत वेख त्वेई खुश में दिन 18 अगस्त के 17 तत् 4:15 और 19 अगस्त को 6:30 से 7:15 तक। डाकरिया आने वाला 20 अगस्त को 14:00 यानी शाम 2 बजे ननसन बान कंत वेख्तवेई खुश सेलंत में। जानकारी के लिए तार का नंबर दिया गया है 0622 42 31।

0: दूसरा मृत्यु समाचार सुनने के लिए ध्यान दीजिए या गौर फरमाइए।
1: सेलंत हुस ओ सुबेरख से परिवार सरजुमिसर, परिवार सरजुमिसर बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि शुक्रवार 14 अगस्त को क्वार्ट ओवर फाइव शाम को 85 साल की उम्र में यानी इंदलीफ सईद फन फैफ तख्तियार दो बेटियां शकुंतला और शर्मिला सरजुमिसर के पिता दो दामाद राज या राजन रौप कुंदन पांडेय और हेमंत रघुनाथ का ससुर चार बेटा शोस बोइक अर्नोल्ड रामोन रोमेयो सरजुमिसर का पिता 20 नाती नातिन पोता पोतिन पर नाती पर नातिन नदमाद और नतपतो के आजा पर आजा नाना पर नाना अजवा ससुर और ननवा ससुर तीन बहुएं यानी सोन दोख्तर्स गीता श्यामलाल उषा तुलसी अरुणा अयोध्या का ससुर पत्नी इंद्रावती सरजुमिसर का पति स्वर्गीय बेटा हैंक जयराज का पिता सेलंत और सुबुरख के रहने वाला श्रीमान पुनिया आत्मा कोंदरात सिंबुदत्त सरजुमिसर का स्वर्गवास हो गया है उनके निवास स्थान पर। आप उन्हें ज्योतिष के नाम से भी जानते थे और सूर्यनाम वेलखलीखन के निवासी था और वहाँ वेलखलीखन का स्कूल का लेरार था। शव के दर्शन आप कर सकते हैं एथफार सेंट्रम हेथ सेव सलोंद ननसन बान कंत वेख्तवी खुस में दिन्स दख अख्तिन अगस्तस को 17 ईयर से क्वार्थ वर्ड सेस्तक और 19 अगस्तस को हालफ सेफ से क्वार्थ ऊफर सेफ तक दाक्रिया दोंदर दख 20 अगस्तस 14 को शाम 2 बजे वही एड्रेस पर ननसन बान कंत वेख्तवी खुस सेलांत में। खबर को हम दोहरा रहे हैं सेलंत हुस ओ सुबर से समस्त परिवार सरजुमिसर कुंदन पांडेय रघुनाथ श्यामलाल और तुलसी बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि फ्राइडे 14 अगस्त को क्वार्ट ओवर फाइव शाम को 85 साल की उम्र में इन द लीफ तहत फन फैफ तख्तियार दो बेटियां शकुंतला शर्मिला के पिता दो दामाद राजन या राज रौप कुंदन पांडेय और हेमंत रघुनाथ का ससुर चार बेटे शोर्स या बॉय के भी कह सकते हैं अर्नोल्ड रामोन रोमेयो सरजुमिसर का पिता 20 नाती नातिन पोता पोतिन पर नाती पर नातिन नदमाद और नदपतो का आजा पर आजा नाना पर नाना अजवा ससुर और ननवा ससुर गीता श्यामलाल उषा तुलसी अरुणा अयोध्या का ससुर पत्नी इंद्रावती सरजुमिसर का पति स्वर्गीय बेटा हैंक जयराज का पिता सेलंत और सुबुरख के रहने वाला श्रीमान पुण्य आत्मा कोंदरात सेम्बुदत्त सरजुमिसर का स्वर्गवास हो गया है उनके निवास स्थान पर। आप उन्हें ज्योतिष के नाम से भी जानते थे और सूर्यनाम में वेलखलीखन के निवासी था और साथ ही साथ वहाँ वेलखलीखन का स्कूल का लेरार। शव का दर्शन आप कर सकते हैं एथफार्ट सेंट्रम हेथ सेव सलंत ननसन बान कंत वेख्तवे खुश में दिन दख 18 अगस्त को 17 ईयर तौर क्वार्ट फोर सेस और वंस दख को 19 अगस्त को हल्फ सेफ से क्वार्ट ओवर सेफ तक दाकरिया दोंदर दख 20 अगस्त शाम 2 बजे ननसन बान कंत वेख्तवे खुश सेलंत में दाकरिया किया जाएगा। बैठक घर पर नहीं है और जानकारी के लिए तार का नंबर दिया गया है 0 6 20 20 24 12 31.

इंसानी रेडियो, सभी परिवार सरजू मिसिर, सभी परिवार रघुनाथ, कुंदन पांडे, तुलसी, श्यामलाल, सरजू मिसिर और गंगा को शोक संवेदना प्रकट कर रहा है। सहन शक्ति के लिए प्रार्थना किया जा रहा है।

द्वारा पावन हिंदुस्तानी रेडियो सभी परिवार को सुख समृद्धि प्रदान कर रहा है। फिर धीरज से ले दे सभी सावन सुनने वाले से निवेदन है कि ये खबर को और आगे तक पहुंचा देने को। यहाँ तक था ये मृत्यु समाचार। आइंदा

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: कुछ बैठक गाना के साथ हम आप सभी के सेवा करने वाले हैं और लोकल सॉन्ग्स तो जरा सा हम देखें. एक बहुत सा सुंदर गीत है ये सुनने वालों और आपको सुनाने वाले हैं विशाल हीरा जी. और ये गीत खास करके हम पेश करते हैं माता बेट्सी जी के वास्ते. तो चलिए मिलकर सुनते हैं. और गीत का बोल क्या है, भैया ताके लड़की तो भौजी क्या करे है, आप खुद सुन लीजिएगा.

होता है सुनने वालों, अभी तो आपने सुने हैं विशाल हीरा जी की आवाज़ में, भैया ताके लड़की तो लड़की शर्माए, और भौजी के का होवे है मैं कुछ नहीं कहूँगी। गलिया से गलिया

0: We got the whole world shaking.
1: Shake it baby, shake it. अभी आप सुने हैं और हम सोचते हैं कि आप अपने घर पर जरूर भी यानी शेक किए होंगे, और ये तो हमेशा होता है यानी बड़ी तादाद में होता है सुनने वालों के। जब लोग शराब पीते हैं तो क्या होता है, संदीप बदलू जी की आवाज़ में आप खुद सुन लीजिएगा।

संदीप बदलू जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे कि बुढ़वा क्या खोजे है और बुढ़वा और क्या करे है, ये हम आपको सुनाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे बुढ़वा बेईमान मांगे करेली के चोखा। और करेली के चोखा के बाद हरिदत्त जयराम जी आपको सुनाने वाले हैं पैसा के मैया पहाड़ चढ़े।

पैसा कमाई पहाड़ चढ़े अभी आप सुन रहे थे हरिदत्त जयराम जी की आवाज़ में। बार बार बगिया में कोयल ना बोले।

अभी आप सुन रहे थे दविंदर सिंह सिवनाथ जी की आवाज में बार बार बगिया में कोयल ना बोलत। और दविंदर सिंह सिवनाथ जी की आवाज के बाद हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते वारिका राम सुकुल जी को। सजन मोरे आचार्य

अभी आप सुन रहे थे वादिका रामसुकुलज की आवाज़ में उड़ उड़ जाए निंदिया मोड़ी। आपके आ जाने से हम पेश करते हैं सुनने वालों रायन मनोरथ और जॉयस शिव प्रसाद जी की आवाज़ में।

रायन मनोरथ और जॉयस सुप्रसाद जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। आपके आ जाने से हो गए तेरे हो गए मैशअप बाय वानिका रामसुकू।

हो गए तेरे हो गए मैशअप अभी आप सुन रहे थे वादिका राम सुकुल जी की आवाज़ में। सुनने वालों यहाँ तक आप यानी सरासा हम देखे, हाँ हाँ हाँ, पहले ये गीत हो जाए।

0: सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हैं हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, हमें आशा है कि प्रोग्राम आप लोगों को जरूर पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो आने वाले रविवार को हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, हमारी प्यार भरी राम राम नमस्कार, खुदा हाफिज। Have a blessed day.
1: मैं तुझे छोड़।
0: Until next Sunday.

सूरज छिपे अदरी बदरी, चंद्रमा छिपे अमावस आए, पानी के बूंद पतंग छिपे, मीन छिपे हिच्छा जल पाए, भोर भये पर चोर छिपे, मोर छिपे फागुन ऋतु आए, सौ घूंघट के पट ओंठ छिपे, पर चंचल नारी छिपे न छिपाए।

माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ ये गीत हम आपको सुनाए हैं। फिल्म फर्ज में से निकाल कर हमने पेश की लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। फाउन हिंदुस्तानी पर आप चून हैं, जो लोग चून किए हैं आपका स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम एक सुरेश वादिकर जी के गीत आपको सुनाते हैं। चलो सुरेश वादिकर की आवाज़ में ये गीत।

सुरेश वाडेकर आपको सुनाए ये शानदार गीत निगाहें यार ने कि एक ऐसा जादू भर दिया, और ये गीत हमने पेश की आज के कार्यक्रम में। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, जी हाँ, देखते हैं ये प्यारा गीत भी जहाँ तक मेरा ख्याल है फर्श से निकाल रहे हैं, तो इस तरह से हम इसे चला रहे हैं, सुना रहे हैं।

शिकार करने का आए शिकार होके चले, ये गीत हमने पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। ये अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, और क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ इस तरह से, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।

लता जी और माइति मुकेश द हार्ट ऑफ अ मिलियंस दोनों मिलकर आपको सुनाई है ये प्यारा गीत हमने पेश की। चलिए एक गीत हमने प्लेयर में रखे हैं और ये भी लता जी के फिल्म है आओ प्यार करें। जी हाँ, तो चलो सुनते हैं आओ प्यार करें में। और तो गाना तो है लेकिन कौन सा गाना मैं चलाने वाला हूँ लता जी की, ये सुनिए।

Zo, gaan ze pata chalta, ze is toch wat van plan. लता जी की आवाज़ में ये शानदार गीत हम आपको सुनाएं। योजना तो बहुत बनाया मौसम के देखकर, बहरहाल फ़ौन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हमने ये गीत पेश की। तो अगर ये गीत पेश की तो चलो हम आपको सुनाते हैं ये गीत उसके बाद।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर ये गीत पेश हुआ, लता जी की आवाज़ में फिल्म आन मिलो सजना में से हमने निकाले हैं और आपको सुनाए हैं। अगला गीत हमने प्लेयर में एक रखे हैं, इसकी थोड़ी बयाना बता देते हैं। ये गीत गाया गया है सी रामचंद्रा जो म्यूजिक डायरेक्टर है, उन्हीं के साज पर लता जी के साथ फिल्म अलबेला में। तो बात ऐसे है कि अब कौन रात्रि के 12 बजे रात्रि को यहाँ स्टूडियो आएगा और बैठकर आपको ये गीत सुनाएगा, मेरे बस के तो बात नहीं है। शायद कभी साल में एक बार हो जाए कि 12 बजे रात्रि को मैं यहाँ आऊँ स्टूडियो में बैठूँ और आपको पहले बताऊँ कि गंगा ये गीत चलाने वाला है, ये नहीं करेंगे। चलिए ये गीत हम अभी आपको सुना देते हैं क्योंकि 12 बजे रात्रि का कौन इंतज़ार करेगा। चलो हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है 12 बजे रात्रि को जलाना चलाना था, हम आपको अभी सुना देते हैं इस तरह से।

नमस्तस्य नमो नमः। हरिओम। एकदम भैया बीरबल के स्टाइल में कैसे रह लो आप लोग साथियों, पावन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया का दोस्तों, स्वीकार कीजिए हम लोगों का सागर सा भरा हुआ प्यार, नमस्कार और साथ ही साथ कबूल हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी हुई सलाम को, और आप सभी को भी हरिओम हरि बोल सत श्री अकाल। मैं हूँ आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेन कृष्णदत्त भगवान दीन, जिसे आप ढेर सारे श्रोता गुण आकाशवाणी के दोस्तों भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं। बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम संगीतकार का दास्ता नामक कार्यक्रम, खलिंग्त मेट गीत और गजल एंड ओल्ड इज गोल्ड, यही आशा उम्मीद लेकर आया हूँ यारो ये अति सुंदर प्रोग्राम को लेकर कि आप सभी को आज का सिलेक्शन भी जरूर पसंद आएगा। तो जहाँ पर भी हो, जिस हाल में हो, घर पे हो या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो या तो काम कर रहे हो, दुनिया के जो भी कोने में कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुँचे, हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ रात्रि पेश है मिथिलफी लश्तर प्लेजीर के साथ। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इस दबलश्तर फिया इंटरनेट के लहर द्वारा faunfm.nl पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। तो जो भी रेडियो का काम आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना चाहते हो यारो, तो जरूर आप तार करें फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में फनमान डॉक्टर फ्रेडा टाइल्स कंटोर उर उप द फॉलोइंग द टेलीफोन नंबर्स कंटोर 07-3562-2047 और स्टूडियो का तार का नंबर है 07-3062-2047। क्वालिटी गारंटी और सर्विस के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो ये काम आप लोगों के लिए भी चैनी से करने के लिए इंतजार में रहते हैं साथियों, एनी तो फरखेते हैं उनसे क्वालिटी इज ऑलटाइम यू गारंटी एंड नेचुरली फूलते सिर्फ ऑलटाइम लेकर दरबाई फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो सबसे पहले आप श्रोताओं ने एक अति सुंदर प्रोग्राम को सुन रहे थे, जो खास करके हम लोगों का बड़का भैया द वन एंड ओनली मास्टरो चंद्र सेन गंगा जी ने आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया। जिस तौर तरीके से हम लोगों का बड़का भैया श्री गंगा जी आप सभी को सदियों से सेवा करते आ रहे हैं, ये आशा उम्मीद है उनका पेश किया हुआ प्रोग्राम जो जबरदस्त था आप सभी को जरूर बेहद पसंद आया हुआ होगा। आज के लिए तहे दिल से धन्यवाद भाई गंगा जी फूल टीम की तरफ से, और आपको भी एक शुभ रात्रि। अगर आपके घर पे खुशी का दिन मनाया जा रहा है, हो सकता है कि आपके घर पे एक बेटा है तो एक बेटी ने जन्म लिया होगा, या तो किसी के जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिलकर मना रहे हैं, विवाह संस्कार के सीजन तो चल रहा है, तो हो सकता है कि आप विवाह संस्कार की तैयारियां में लगे हो। जो भी खुशी के दिन जश्न आप सभी मना रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के फुल टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारे बधाइयां ही बधाइयां, खुशियां ही खुशियां, प्यार मोहब्बत के साथ पेश है ओ परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर यही विनती दुआ करते हैं कि आप सभी के नेक मनोकामनाएं नेक इरादे सभी पूर्ण होते जाए। और हो सकता है कि आपके घर पे एक दुख का घड़ी आन पड़ा है, आप एक मातम में हो गमी में, तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो अपने फुल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है, मातम में शरीक है, और ऊपर वाले से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी को शैन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे। जो बीमार लाचार है आपके तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए, बेहतर हो जाए, चंगा हो जाए, नित फरखेत हैं जिंदगी का मजा रोजाना लेते रहना बंधु, और हो सके तो हम लोगों को भी सुनते रहना और थोड़ा बहुत हम लोगों के बारे में जरूर बातें शाते करते रहना ना। फनहर्त बीतर्शा आप
कामयाब हो तो हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से बधाइयां ही बधाइयां। और हो सकता है बंधु कि आज या कल परसों कुछ कारण हुआ हो जो आप कामयाब नहीं हुए, तो चिंता के कोई बात नहीं है, मूर्ख ईश्वर दख। और हम लोग तो यही सीखा है ना, सगरो घरे स्कूल पर कमुआ पर नोई तो खीफ है, सदा कोशिश जारी रखना तो हो सकता है कि कामयाबी भी आपके कदमों को जल्द से जल्द आकर चूम सकते है ना। देखो मेहनत तो है दौलत का यारी, नोई तो खीफ है वो तो खरेट नेफर गिफ ब्रदर नंगसीता। So, so, lobby, lobby, and blessings to all of you. En natuurlijk bedankt voor het luisteren. Galaka halen to aap sabhi sun rahe hai. Soms heb ik een kriebelhoesje, ook al een tijdje last van. Maar ja, ik ben er. Dus had je program ka shuruaat to main sadiyon se karta aa raha hu, aur aap sabhi ko bhi avashy desh mein parvesh hue to aapko bhi ek suswagatam full team ki taraf se. Aur agar aap desh ko chhod ke videsh yatra pe ja rahe om ergens anders vakansie te vieren, natuurlijk आपको भी हमारे फूल टीम की तरफ से एक शुभ यात्रा, फिन फकांसी। तमाम लोग सुनते हैं हम लोगों को इंटरनेट के लहरों द्वारा, ओपन लैपटॉप टैबलेट ऑफ स्मार्टफोन, तो आप भी सुनिए हम लोगों को। सो बनते हैं ब्रेव टू फन ऑलस ऑफ द होक्ट है फन यू फेवरेट रेडियो स्टेशन, एंड दैट इज नेचुरली हमारे देन हाफ शेयर का द वन एंड ओनली फाहून हिंदुस्तानी रेडियो 24 आवर्स एट योर सर्विस। प्रोग्राम का शुरुआत तो मैं सदियों से करते आ रहा हूँ, वही शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के साथ। और सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब एड फिल्म ललकार 1972 एंड गकॉम्पोनेट डोर ब्रूडर्स कल्याण जी आनंद जी। और उसके बाद आप कुछ पुराने नगमे सुनेंगे जो मैं खास करके आज का इस रात्रि के लिए सेलेक्ट किया हूँ। उसके बाद तकरीबन 9 से साढ़े दस बजे तक आप सिर्फ नगमे सुनेंगे जिन फिल्मों में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर धर्मेंद्र जी ने काम किया है। बीच में कुछ ज्ञान की बातें है, शेर शायरी भी है, तो हमारा और आपका साथ तकरीबन 10:30 बजे हाजिरी तक चलेगा। साथियों स्टूडियो की तरफ जब मैं आ रहा था तो तापमान तकरीबन 19 और 20 डिग्री के दरमियान था, थोड़ा बहुत धूप भी निकला है। तो ज़रूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मज़े लेते रहना। कुछ पुराने गाने लेकर आया हूँ, ख़ास करके अगर आप पुराने गाने को पसंद करते हैं तो ज़रूर प्रोग्राम को सुनते रहना। रफी साहब जी आप सभी के लिए ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत।

गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो, हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। साथियों आज का इस हसीन रात्रि का मैं शुरुआत करने वाला हूँ भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी का गाया हुआ ये अति सुंदर बयान, एल्ख कॉम्पोनियर दौर पुराने जमाने के महान संगीतकार मैस्त्रो अनिल विश्वास जी। तो मिलके सुनते हैं ये अति सुंदर बयान, एवर ग्रीन सॉन्ग अर एंड फिर तक एक दिल का लगाना बाकी था।

क्या बात है, द मास्टरपीस ऑफ कंपोजिंग बाय मैस्ट्रो अनिल विश्वास जी। और क्या गला थी उस जमाने में, बिल्कुल कोयल की तरह भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी का। अगला ब्यान एक और बहुत ही पुराना सॉन्ग है, uit de jaren 1948, फिल्म शहनाज। और लाते हैं आप सभी के सेवा में सुरों का बादशाह, द किंग ऑफ मेलोडी, पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी के जवानी के आवाज आप सुनिए। संगीतकारा अमीर बाई कर्नाटकी का बनाया हुआ ये मीठा धुन। उपनाम इस नीचो देंद्रंत मां, सुनने के काबिल जरूर है। ऐ दिल तुझको नींद न आई, डगड़ेत रफी साहब जी। का

सुंदर बयान आइट फिल्म शहनाज कंपोनेट डोर अमीर भाई करनाट की और आवाज था सुरों का बादशाह मोहम्मद रवि साहब जी का। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम संगीतकारों का दास्ता नामक कार्यक्रम खलिंग में गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड आप सुन रहे हैं। और घड़ी की तरफ देखता हूं तो साथियों 18 मिनट गुजर चुका है 19 अगस्त 2026 बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ओल्ड इज गोल्ड गीत और गजल। अगला बयान सुरों का देवी लता जी एक बार फिर टुगेदर विद मैस्ट्रो अनिल विश्वास।

Beautiful song uit de jaren eind 40. Queen of Melody, Let That You Can Beautiful Avance Me. Gecomponeerd door Zwanike Mahan, music director Sri Anil Viswasji. अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं. कुछ यादें हैं महान फिल्म डायरेक्टर ग्रेट नितिन बोस जी के बनाए हुए फिल्म में से आप कुछ नगमे सुनिए रवि साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में.

क्या बात है, अति सुंदर बयान आप श्रोताओं सुन रहे थे। और ये भी सुरोका देवी द क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के कुछ पुराने गाने अगर 48 दार्तुसनेन। और आप तो सुन रहे हैं कि कौन सा मधुर और कोयल सी आवाज उस जमाने में था लता जी का। और क्या बात है, एक और महान गायक सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी रफी साहब जी के कुछ गाने आप सुनिए। एड फिल्म्स फ्रॉम नितिन बोस, महान फिल्म डायरेक्टर उस जमाने का, द ग्रेट रफी साहब।

रवि साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुन रहे साथियों के साथ ये अति सुंदर बयान डायरेक्ट बाय नितिन बोस। तो साथियों 5 मिनट गुजर चुका है 8:30, तो कुछ शेर शायरी हो जाए ना हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए, गौर फरमाए। कुछ 2 लाइन शेर शायरी है साथियों, यही तो खूबी है ना 2 लाइन शेर शायरी का, कि इतने कम लफ्जों में लोग पूरे कहानी सुना देते हैं। तो गौर फरमाए। अर्ज किया है साथियों कि ठंड बढ़ गई है, आ जाओ फिर थोड़ा आग के पास। ठंड बढ़ गई है, आ जाओ फिर थोड़ा आग के आस पास, घूम कर फेरे ले लेते हैं। अगर सुंदर होना गुनाह है यारो, अगर सुंदर होना गुनाह है तो पक्का तुम बेगुनाह हो। मुझको मंजूर तेरा नाम की तोहमत, मुझको मंजूर तेरे नाम की तोहमत, तुम पे मरते हैं साफ कहते हैं। फासला ऐसा कि उसे देख भी नहीं सकते, फासला ऐसा कि उसे देख भी नहीं सकते, दूर कुर्बते ऐसी कि वो रग रग में रहता है। एक अजीब से बेताबी है तेरे बिन, एक अजीब से बेताबी है तेरे बिन, रह भी लेते हैं और रहा भी नहीं जाता। एक वक्त था जब बातें कभी खत्म भी नहीं होती, एक वक्त ऐसा था जब बातें कभी खत्म भी नहीं होती थी, एक वक्त अब है जब बातें ही नहीं होती। आगे के प्रोग्राम में कोशिश करूंगा कुछ और सुनाने को साथियों। अगला बयान एक बार फिर द ग्रेट रवि साहब के, तो आप सुन चुके, अभी आ रहा है प्रोग्राम में। एक बार फिर लता जी को लाते हैं प्रोग्राम में। कुछ पुराने गाने सेलेक्ट किया हूं टुगेदर विद उस जमाने के महान संगीतकार, लेखक, सिंगर भी था मास्टरो अनिल विश्वास जी, और सुनाती है आप सभी को बदली तेरी नजर तो नजारे बदल गए। क्या बात है, मिल के सुनते हैं सुपरहिट ओथ सॉन्ग, एवरग्रीन सॉन्ग।

De composant arrangé by maestro Neil Vislansky over Avanti Suroka Devi, the great Latajika. 18 मिनट बाकी है साथियों, 9 बजने में एक जबरदस्त सॉन्ग आप सुनिए और गाने वाला है पद्मश्री महेंद्र कपूर जी आप सभी के खिदमत में। और ये भी एक फिल्म है जिनमें डायरेक्टर था द ग्रेट नितिन भोज जी, और उन्हीं के याद में ये थी सुंदर बयान आप सुनिए महेंद्र कपूर जी के जबरदस्त सॉन्ग।

क्या बात है, अति सुंदर बयान है आप श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया खसों द्वारा पद्मश्री महेंद्र कपूर जी एक फिल्म गरेजिस्टर्ड डोर नितिन बोस। 14 मिनट बाकी है साथियों, 9 बजने में तो एक और अति सुंदर बयान एवरग्रीन सॉन्ग आप सुनिए, क्वीन ऑफ मेलोडी भारत रत्न लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में। कटी है अब तो जिंदगी, और एक बार फिर कंपोनेड और द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर वन एंड ओनली मास्टर अनिल विश्वास।

0: सुंदर बयान दिल को छू लेने वाले नगमे लता जी को पांच आप सुन रहे थे, और ये भी पांचों ने अरेंज और कंपोज किया महान म्यूजिक डायरेक्टर द ग्रेट ग्रेट ग्रेट अनिल विश्वास जी। साथियों, एक अति सुंदर समाचार है जो आप सभी को जरूर जानना चाहिए, खास करके अगर आप एक डाई हार्ट किशोर दा का फैन हो तो। किशोर कुमार क्लासिकल सरप्राइजेस सॉन्ग के बारे में आप सभी को मालूम है, तो और कुछ बातें जो आपको नहीं मालूम है तो ये कहानी में जरूर आप सुन लीजिए किशोर दा के बारे में।
1: दोस्तों, लेजेंडरी आर्टिस्ट एंड सिंगर किशोर कुमार को यूं तो एक क्लासिकल बेस सिंगर के रूप में नहीं जाना जाता, पर आज इस वीडियो में हम किशोरदा के शास्त्रीय रागों पर आधारित कुछ ऐसे गीत आपको बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देंगे कि कैसे बिना क्लासिकल की ट्रेनिंग के किशोरदा शास्त्रीय रागों पर बेस्ड गीतों को बखूबी गा लिया करते थे। इस वीडियो में हम न सिर्फ आपको किशोरदा के गाए क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग्स के बारे में बताएंगे, बल्कि उन गीतों से जुड़े दिलचस्प किस्से भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आप एक किशोर कुमार फैन हैं, तो इस लिस्ट का आखिरी गीत आपके लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज होने वाला है, जो शायद आपने पहले नहीं सुना होगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सिंगिंग इमोशन। फ्रेंड्स, किशोर कुमार की गिनती भारतीय सिनेमा के ऑल टाइम ग्रेट प्लेबैक सिंगर्स में होती है। किशोर कुमार की आवाज हमेशा से अच्छी थी, पर उनका सफर हमेशा आसान नहीं रहा। जबरदस्त सिंगिंग टैलेंट के बावजूद क्लासिकल म्यूजिक की फॉर्मल ट्रेनिंग न होने की वजह से उन्हें करियर के शुरुआती दिनों में एज ए सिंगर काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। 1950 और 60 के दशक में कई पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर्स जैसे नौशाद, ओपी नैयर, सलील चौधरी, मदन मोहन इत्यादि किशोरदा के क्लासिकल में ट्रेंड न होने की वजह से उनसे गीत नहीं गवाते थे। हालांकि एसडी परमन ने किशोरदा के रॉ टैलेंट को पहचाना, उसे तराशा और उन्हें देवानंद की फिल्मों में गाने का मौका दिया। पर जब किशोर कुमार एक सिंगर के तौर पर पॉपुलर हो गए, तब आम धारणा के विपरीत किशोरदा ने कई ऐसे मधुर और सदाबहार गीत गाए जो शास्त्रीय संगीत पर बेस्ड थे। बेशक उनका सिंगिंग स्टाइल टिपिकल क्लासिकल रागों पर बेस्ड न रहा हो, पर उनके गाए कई गीतों में परंपरागत शास्त्रीय संगीत का रस और माधुर्य साफ झलकता है। पॉपुलर ट्यून्स को क्लासिकल की बारीकियों के साथ मिलाने के उनके हुनर ने एक गायक के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को और गहराई से दर्शाया है। आज इस वीडियो में हम किशोरदा के कुछ ऐसे चुनिंदा गीतों पर रोशनी डालेंगे जो क्लासिकल बेस्ड हैं और विभिन्न रागों पर आधारित हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं राग शिवरंजनी पर आधारित एक गीत की। शिव और रंजनी के जोड़ से बने राग शिवरंजनी की उत्पत्ति के बारे में मान्यता है कि जब शिव अपना तांडव कर रहे थे तो उन्हें शांत करने के लिए साधु संतों ने यह राग गाया था। शास्त्रीय संगीत में यह राग शांत रस में दुख, विरह और गहरे प्रेम को प्रकट करता है तथा एक डिवाइन एक्सपीरियंस का एहसास देने वाला राग माना जाता है। इस राग को गाने का समय है मध्य रात्रि यानी कि मिडनाइट। राग शिवरंजनी पर आधारित किशोरदा का ये पॉपुलर गीत 1976 में आई फिल्म महबूबा से है। इस गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने और म्यूजिक दिया था आरडी बर्मन ने। गीत के बोल हैं, मेरे नैना सावन भादो। इस गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी है। जब आरडी बर्मन ने गीत की कंपोजिशन तैयार की तो फिल्म के डायरेक्टर शक्ति सामंता को भी डाउट था कि ये गीत किशोरदा गा नहीं पाएंगे, लेकिन राजेश खन्ना और आरडी बर्मन किशोरदा से ये गीत गवाना चाहते थे। पर किशोरदा ने ये शर्त रखी कि आरडी बर्मन पहले लता मंगेशकर का वर्जन रिकॉर्ड करें। फिर उन्होंने एक सप्ताह का समय मांगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि लता जी के रिकॉर्डेड वर्जन से कॉपी करके वो अपना वर्जन गाएंगे। एक हफ्ते बाद जब उन्होंने अपना वर्जन रिकॉर्ड किया तो इस गीत ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी गूंजती आवाज में गाना मनमोहक लग रहा था और गाने के फीमेल वर्जन से भी बेटर लग रहा था। इस गीत को सुनकर शायद ही कोई कहेगा कि किशोर कुमार ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा नहीं ली है। आरडी बर्मन का कहना था कि किशोर कुमार एक कंप्लीट सिंगर थे। एक इंटरव्यू में पंचम कहते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि हम क्लासिकल बेस्ड गीत क्यों नहीं बनाते, पर आज हमारे पास किशोरदा जैसे सिंगर है ही कहां जो कि ऐसे गीत गा पाए। राग शिवरंजनी पर आधारित किशोरदा के कुछ अन्य गीत हैं, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, फिल्म मुकद्दर का सिकंदर, कब के बिछड़े हुए हम, फिल्म लावारिस। अब बात करते हैं राग झिंझोटी की। झुमरू फिल्म में राग झिंझोटी पर आधारित किशोरदा का गीत कोई हमदम न रहा बहुत मधुर बन पड़ा है। राग झिंझोटी एक हल्का और चंचल राग है जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के लिए परफेक्ट है। इस राग का समय है रात्रि का दूसरा पहर यानी रात्रि के 9 से 12 बजे तक। राग झिंझोटी पर आधारित किशोर कुमार का ये गीत भारत की प्रथम महिला संगीतकार सरस्वती देवी द्वारा बनाया गया था और इस गीत को सबसे पहले किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार ने अपनी फिल्म जीवन नैया में गाया था। किशोर कुमार को अपने बड़े भाई की फिल्म का ये पुराना गीत बहुत पसंद था और जब उन्होंने अशोक कुमार को बताया कि वो इस गीत को अपनी फिल्म झुमरू में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दादामुनि अशोक कुमार ने किशोरदा से कहा कि ये गीत बहुत मुश्किल है, तुम नहीं गा पाओगे क्योंकि इसमें अड़ा चौताल की 14 मात्राएं हैं। किशोरदा बोले, मुझे चौताल वगैरह तो नहीं पता लेकिन इतना जरूर पता है कि ये गाना मैं तुमसे अच्छा गाऊंगा। और जैसा कि किशोरदा ने कहा था, राग झिंझोटी पर आधारित ये गीत किशोरदा ने बेहद खूबसूरती से गाया और ये उनके बेहतरीन गीतों में शामिल है। फिल्म चोर मचाए शोर में किशोरदा का गीत घुंघरू की तरह ये भी राग झिंझोटी पर ही आधारित है। अब बात करते हैं राग भैरवी की। दोस्तों, राग भैरवी एक अत्यंत मधुर राग है और इस कारण इसे सिर्फ प्रातः समय ही नहीं बल्कि हर समय गाया और बजाया जा सकता है। सभी इवेंट्स और समारोहों का समापन इसी राग से करने का एक ट्रेंड सा बन गया है। म्यूजिक डायरेक्टर आरडी बर्मन द्वारा कंपोज किया हुआ अमर प्रेम का गीत चिंगारी कोई भड़के राग भैरवी पर ही आधारित है। इनफैक्ट इस फिल्म का हर एक गीत एक मास्टरपीस है जो अलग अलग रागों पर आधारित है, जैसे कि राग खमाज पर आधारित गीत कुछ तो लोग कहेंगे, राग कलावती पर आधारित गीत ये क्या हुआ इत्यादि। रिपोर्ट्स के अनुसार एक बार ग्रेट क्लासिकल सिंगर पंडित भीमसेन जोशी जी ने अमर प्रेम मूवी में किशोरदा के गाए गीतों की खूब तारीफ की थी और क्लासिकल पर उनकी पकड़ और नोट्स का ट्रांजिशन देखकर मराठी में कहा था, उपकार जाले तो सीखा नहीं शास्त्रीय संगीत, आमचा पोता वार पाए आला आस्ता। शुक्र है कि किशोर कुमार ने क्लासिकल नहीं सीखा वरना हमें टफ कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ता। दोस्तों, राग भैरवी पर आधारित किशोर कुमार के अन्य गीत हैं आते जाते खूबसूरत फिल्म अनुरोध, चेहरा है या चांद खिला है फिल्म सागर, हमें तुमसे प्यार कितना फिल्म कुदरत, चिंगारी कोई भड़के फिल्म अमर प्रेम। दोस्तों, बात करते हैं राग यमन या यमन कल्याण की। दोस्तों, राग यमन कल्याण एक बहुत ही लोकप्रिय शास्त्रीय राग है। कई बॉलीवुड गाने इसी राग पर आधारित हैं। इस राग को रात्रि के प्रथम पहर या संध्या समय गाया बजाया जाता है। यह राग बहुत मीठा लगता है और कई बेहतरीन गजलों को प्रेरित कर चुका है। खामोशी फिल्म में गाया किशोर कुमार का गीत वो शाम कुछ अजीब थी यमन राग पर ही आधारित है। इस गीत को हेमंत कुमार ने संगीत दिया था और गुलजार ने लिखा था। इस गीत को किशोरदा अपने 10 बेस्ट गीतों में से एक मानते थे। राग यमन पर आधारित किशोरदा के कुछ अन्य गीत हैं, आपके अनुरोध पे फिल्म अनुरोध, इस मोड़ से जाते हैं फिल्म आंधी और सवेरे का सूरज फिल्म एक बार मुस्कुरा दो। दोस्तों, अब बात करते हैं राग पहाड़ी की। राग पहाड़ी की उत्पत्ति बिलावल थाट से मानी गई है। इस राग को गाने बजाने का समय रात्रि का प्रथम पहर है। राग पहाड़ी पर किशोरदा की पकड़ बहुत अच्छी थी जिससे कि उनकी आवाज में गाए इस राग के सारे गीत बहुत मधुर बन पड़े हैं। एसडी बर्मन और आरडी बर्मन ने राग पहाड़ी पर बेस्ड कई गीत किशोरदा से गवाए हैं, जैसे करवटें बदलते रहे सारी रात हम फिल्म आपकी कसम, कोरा कागज था ये मन मेरा फिल्म आराधना, गाता रहे मेरा दिल फिल्म गाइड और फूलों के रंग से फिल्म प्रेम पुजारी इत्यादि। दोस्तों, अब राग मारू बिहाग पर आधारित किशोरदा का जो क्लासिकल बेस्ड गीत हम आपको बताने जा रहे हैं वो गीत आपके लिए भी एक सरप्राइज होने वाला है। इस गीत में आपको न सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग में बल्कि स्क्रीन पर भी शास्त्रीय गायक किशोर कुमार का एक निराला अवतार देखने को मिलेगा और ये गीत सच्चे मायनों में किशोरदा के फैंस के लिए एक ट्रीट है। दोस्तों, राग मारू बिहाग एक बहुत ही मधुर राग है और इसे गाने का समय है रात्रि का दूसरा पहर यानी कि रात 9 बजे से 12 बजे तक। दोस्तों, 1963 में आई किशोरदा की फिल्म एक राज का गीत पायल वाली देखना शास्त्रीय राग मारू बिहाग पर आधारित होने के कारण संगीतकार चित्रगुप्त जी इसे पहले मोहम्मद रफी से गवाना चाहते थे पर बाद में किशोरदा ने अपनी सहज प्रतिभा और भावनाओं की गहराई से इस गीत को जीवंत कर दिया। इस गीत में किशोरदा ने साबित कर दिया कि शास्त्रीय संगीत का ज्ञान न होने के बावजूद एक गायक अपनी आवाज और भावनाओं से किसी भी गीत को अमर बना सकता है। राग मारू बिहाग पर आधारित किशोरदा के कुछ अन्य गीत हैं, सलामे इश्क मेरी जान फिल्म मुकद्दर का सिकंदर, आ हम सफर प्यार की सेज पर फिल्म चटपटी। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन के एक्टिव सब्सक्राइबर श्रीकांत शाह जी की खास फरमाइश पर बनाया गया था। श्रीकांत जी, थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग अस टू मेक दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया
0: तो साथियों आप सुने ना कि किशोरदा है वैसे नेचुरल टैलेंट और शास्त्रीय संगीत क्लासिकल संगीत ना सीखने के बाद बिना भी ये इतने डिफिकल्ट इतने मुहिलक गाना गाए हैं हम लोगों के लिए कि सदियों हम लोग सुनते रहेंगे लेकिन मन नहीं भरेगा। तो इसलिए जब मैं किशोर दा को जब अनाउंस करता हूँ ना तो मैं कहता हूँ ना संगीतकारों का बादशाह और शहंशाह, तो आप सुन रहे थे कि कितना महान फनकार हम लोगों का किशोर दा थे। तो इन्हीं शब्दों से आप आज का ये जो पहला अध्याय है ना गीत और गजल और इस गोद का मैं समाप्त करता हूँ। तो अभी आप विज्ञापन सुनिए, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूँ साथियों, कहीं जाना मत।
2: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.
3: Auto voor

फॉर्मर हिंदुस्तानी रेडियो का बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। हमारे फूल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। अनतुल्यक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स, सोशल लोबी लोबी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड अनतुल्यक बदंत फॉर हेट लुस्टरन। 8 मिनट गुजर चुका है 9:19 अगस्त 2026 का ये रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। ई गीत और गजल ओट इज गो। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइशें, जरूरी खबरें, इश्तिहारे डेंकम फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश होना, अपमात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को ऑल इंडिया भर में नहीं मिलेगा यारो। आजमा कर तो देख। Die jankarie bellen van maandag tot vrijdag tijdens kantooruren op de volgende telefoonnummers: kantoor 070-365-2247 en studio Katarka nummer 070-362-2077. Zo bij Radio Kakamona, denk aan Fahon Hindustani Radio. Je bent van harte welkom. इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यारो, रेकलाम बनाते रहना, क्योंकि आप लोग है तो हम लोग भी है, और इसके लिए हमारे फूल टीम के तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। चुनाव के लिए फनफा हूँ हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेम्बर बने और को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। En we hebben ook onze eigen karaoke team waar heel veel omroepers ook live zingen. Dus volg onze social media's en onze omroepers, dan hoort u of ziet u binnenkort waar wij live voor u gaan zingen, en dan bent u ook van harte welkom. Kabihaker is chota sa mota sa फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का फैमिली जो काफी बड़ा बन चुका है, आप भी आकर उसमें शामिल हो जाए ना। सभी जानकारी आपके लिए आप तार करे फमानख टुट फ्रेरख टेरिस कंटोर यूर ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर 070-365-2247, dan wordt hij automatisch doorverbonden naar onze teamleider, de one and only maestro Johnny number one. Wabi aker hem loka member bene, oh roko bhi bene. U bent van harte welkom. Aur isi tarah hum logo ke bare mein charcha karte rehna. Hats off to all of you and natürlich bedankt for het luisteren. वड़ा के मुताबिक एक दम बढ़ते है प्रोग्राम की तरफ। साथियों, बीते हुए हफ्ते हम लोग पहुंच चुके थे फिल्म रेशम की डोरी तक। जी हाँ, आप अब नगमे सुनेंगे जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर धर्मेंद्र जी ने काम किया है। और रेशम की डोरी में धर्मेंद्र ने काम किया है मलकाय हुस्न द ग्रेट त्रिश कुमुत चुगानी एन मलकाय हुस्न द ग्रेट सैरा बानो जी के साथ महान संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के साथ है। अल्फाजे है उस जमाने के महान लेखक द ग्रेट नीरज जी का। तो अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं। आई फिल्म रेशम की डोरी क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, द वन एंड ओनली आयशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में सोना है चांदी है। एंजॉय द म्यूजिक।

सुंदर बयान सोना है चांदी है आई द फिल्म रेशम की डोरी और गाने वाली था डेगड़े आशा जी। 17 मिनट गुजर चुका है 9 बजकर साथियों और आप चुन हैं आप ही का मन चाह रेडियो स्टेशन पर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो फ्रॉम द हेग सिटी और आप सुन रहे हैं गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड नामक कार्यक्रम और गाने चल रहे हैं जिन फिल्मों में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर धर्मेंद्र जी द ही मैन ने काम किए हैं। अगला बयान चमका पसीना और एक बार फिर लाते हैं संगीतकारों का बादशाह और शहंशाह दवाने डोली हसीन का पुजारी किशोर दा शंकर जय किशन के सांस पर इन दीवर के अल्फाजे।

ब्यूटीफुल सॉन्ग और कुछ गुनगुना दिया था सैरा बानो भी जी रवि साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में शंकर जय किशन के साज अल्फाज था एंडी वर्जी का और फिल्म रेशम की डोरी अजनी थी फिर सिंह 4 मिनट बाकी है साथियों 9:30 बजने में अगला बयान आखिरी बयान होगा फॉर द लास्ट सॉन्ग है फिल्म रेशम की जोड़ी का लेकिन उससे पहले पद्म भूषण मन्ना डे जी से आप सुनिए शंकर जय किशन के सांच पर नीरज जी के लिखा हुआ ये अति शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान खसौंद मन्ना डे जी

क्या बात है, द ग्रेट मन्ना डे जी के ब्यूटीफुल आवाज में इतनी सुंदर बयान आप श्रोताओं सुन रहे थे। आई द फिल्म रेशम की डोरी ने रिफरेंस सैफ अली खान कंपोनेड और द मास्टर शंकर जय किशन। तीन मिनट व्यतीत हो चुका है 9:30 बजकर साथियों, तो कुछ ज्ञान के बातें हो जाए ना। पुराने जमाने के कुछ विद्वानों और कुछ इस जमाने के पढ़े लिखे लोगों, मशहूर मशहूर लोगों ने कुछ बहुत ही ज्ञान से भरे हुए बातें लिखे हैं सीताते के रूप में, जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूं। ये आशा उम्मीद लेकर इन बातों से हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो हम लोग सीखते ही रहेंगे। तो जरा गौर फरमाए, अर्ज क्या है हम लोगों का? अपना बुद्ध भगवान द ग्रेट सिद्धार्थ जी ने और बुद्ध भगवान ने कहा है साथियों की ब्लेफ नीत हांग इन हेथ फॉर लीड ड्रोम नीत फ्रॉम द टू कॉम्स्ट मार कॉन्सेंट्रेर ये गेस्ट ऑफ हेथ हेडग मोमेंट। आगे में कहा है श्री महाज्ञानी द ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने कि द टाइम बिस्टार्ट अलेन मार ओमदैट अंदर्स अलस तगलाइक सौ गेबोरे। ओक एन हेले गुड। महा फुटबॉल का ज्ञानी एंड ग्रोस्ट फुटबॉलर अलर टाइड फॉर नीदरलैंड मैस्ट्रो योहान क्रुइफ ने कहा है यारो कि अल्स स्नेलर विल स्पेलन कुन ये वेल हार्डर लोपन मार इन वीजन बपाल द बाल द स्नेलहेट फॉर हेट स्पेल। Churchill, ooit een leider van Engeland, kahaa hij sparen is prachtig. Vooral als je ouders het voor je hebben gedaan. Zeer zeker. Mahagyani Hari Mulish ne bhi kuch kahaa hai. Aur wo kehta hai yaro, nou, een hele erg, ja, voor de gelovigen is dit een hele vrede en harde citaat. Harry Mulish ne kaha hai saathio, de kerk is het bewijs dat God niet bestaat. Nog eentje van ons Buddha Bhagwan Sridharth ji ne kaha hai ki een goed leraar moet zowel inspireren als irriteren. Johan Wolfgang van Goethe ne kaha hai Aruki, de enige echte liefde is de onmogelijke liefde. Nog eentje van Albert Einstein, Mahagyani, jo atoombom banaya tha. Aur wo kaha hai Aruki, ik geloof in Spinoza's God die zich openbaart in een ordelijke harmonie van alles wat bestaat. Niet in een God die zich bemoeit met het lot en handelen van mensen. En de laatste van vanavond is een Arabisch spreekwoord en luidt als volgt. Een boek is als een tuin die men in zijn zak draagt. Dus dat je op je ज्ञान के बातें सुना, जो कुछ ज्ञान ज्ञानियों ने हम लोगों के लिए लिख कर चले गए हैं, कुछ जीवित है कुछ भगवान को प्यारे हो गए। ये शामिल लेकर इन बातों को मैं आप सभी तक पहुंचाया कि इन बातों से कुछ ना कुछ तो हम लोग हमेशा की तरह सीखते ही रहेंगे। 7 मिनट गुजर चुका है 9:30 बजकर यारो, अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं और देखा जाए ये है आखिरी सॉन्ग ऑफ द फिल्म रेशम की डोरी uit 1974 शंकर जय किशन के साथ। पर आप सुनिए आशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज हसरत जयपुरी के अल्फाजे, जोहरा जमाल हूँ और बेमिसाल।

Beautiful Song, Zohra Zamal Ho Be Mishaal uit de film Resham Ki Dori. Agri Bayan uit de film Resham Ki Dori. En gezongen door Aisha Bhosleji, gecomponeerd door Shankar Jaikishan. Geschreven door Hasrat Jaipuri. साथियों सभी नगमे फिल्म रेशम की डोरी का मैं आप सभी को सुना चुका हूं। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक मूवी जो ऑल्सो रिलीज किया गया था 1974 में, फिल्म पत्थर और पायल। देखा जाए चार गाने हैं इस फिल्म में, और इस फिल्म में धर्मेंद्र जी ने काम किया है मलकाय हुस्न, सेंट्वीर फ्रॉ हेमा मालिनी, महान अभिनेता डिग्रेट विनोद खन्ना जी ने भी इस फिल्म में काम किया है, और डिग्रेट अजीत जय श्रीति एंत नतीलक, राजेंद्र नाथ मीरबकेंत और चार्ली नतीलक। तो फिल्म पत्थर और पायल में से आप नगमे सुनेंगे। पहला बयान सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को एक बार फिर क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, द ग्रेट आशा जी, और अल्फाजे है इंदिवर वर्मा मलिक और गुलशन बावरा ने ये चार गाने इस फिल्म को मिलके लिखे हैं। द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी के साज है, तो मिल के सुनते हैं ना मिला तू नजर, द ग्रेट आशा भोसले जी।

द ग्रेट आयशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना एड फिल्म पत्थर और पायर ने थी फिर इन सेवटक कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी। मेरा मिनट रह गया है साथियों 10 बजने में और आप चुन है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और देखा जाए नगमे चल रहे हैं जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर धर्मेंद्र जी ने काम किए हैं और हम पहुंच चुके हैं तो फिल्म पत्थर और पायल जो रिलीज किया गया था 1974 में। अगला बयान तो है लेने आई मैं आई संवरिया। एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में

बयान श्रोताओं ने सुन रहे थे जो पेश किया गया क्वीन ऑफ मेलोडी आयशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में और कुछ साथियों के साथ।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

बावन हिंदुस्तानी रेडियो का बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। 19 अगस्त 2026 का ये हसीन बुधवार रात्रि का प्रोग्राम चल रहा है। 5 मिनट गुजरने वाला है 10 बजकर यारो। फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। हम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। एनाटिक वेरिक्स बॉयज एंड गर्ल्स सोशल ऑब्लिवियन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एनाटिक बदंत फॉर हेट लाइस्ट्रेन। जो भी रेडियो का काम हो देंक अनफा हो हिंदुस्तानी रेडियो, सभी जानकारी 07-365-2247 पर आप तार करें, या तो स्टूडियो का तार का नंबर है 07-365-2077। बंत यू नो खेल लेट फन फा हो हिंदुस्तानी रेडियो, तो बिनती गुजारिश निवेदन है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। 07-365-2247 पर आप तार करें। इसी तरह हम लोगों के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करते रहना साथियों, और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। एक आखिरी बयान रह गया है सुनाने को, एडू फिल्म पत्थर और पायल एक बार फिर आयशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में गकंपोनेर्ड डोर द खबरूरस कल्याण जी आनंद जी और अल्फाज है गुलशन बावरा जी का कौन हूँ मैं।

Beautiful song uit de film Patthar Aur Payal Aur Ye Dhabi. Us film ka aakhri song. Aur dekha jaye Queen of Rock and Roll Aisha Bhosle ji ke beautiful awaaz mein iti sundar bayan aap sun rahe the. Composed by the brothers Kalyan ji, Anand ji. 10 minute guzar chuka hai, 10 bajkar to saathiyon sabhi gaane film पत्थर और पायल का आप सुन चुके हैं. अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक फिल्म जो ऑल्सो रिलीज किया गया था 1974 में, और उस फिल्म से आप सुनिए फिल्म पॉकेट मार होना चाहिए. इस फिल्म में धर्मेंद्र जी ने काम किया है एक बार फिर मलकाय हुस्न द ग्रेट सैरा बानो जी से साथ, और महान संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी है आनंद बख्शी के अल्फाजे. तो उसी फिल्म से आप नगमे सुनिए. और अगला बयान सुनाने वाला है आप सभी को सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी की, कि मैं बड़ी मुश्किल में हूं ना तुझसे दूर जा सकूं. रफी साहब जी के आवाज में मिलके सुनते यदि सुंदर बयान एड फिल्म पॉकेट मार.

Beautiful song, wonderful song, revisable के beautiful आवाज में आप सुन रहे थे। मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। जबरदस्त song composed by the great लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी और अल्फा से था आनंद बख्शी जी का भाई फिल्म पॉकेट मार 1974। अगला बयान बंदा परवर में कहा, लेकिन उससे पहले साथियों कुछ आखिरी शेयर्स हो जाए ना।

तेरी जरूरत तेरी इंतजार ये तन्हाए आलम, तेरी जरूरत और तेरी इंतजार ये तन्हाए आलम, थक कर मुस्कुरा देता हूं मैं जब रो नहीं पाता हूं। कसम से तुझे पाने की ख्वाहिश तो बहुत थी, कसम से तुझे पाने की ख्वाहिश तो बहुत थी, मगर मुझे तुझसे दूर करने की दुआ करने वाले ज्यादा निकले। She was crying because he was not with her, but she is happy now because she know that how much her parents love her. मुझे तो आज पता चला कि मैं किस कदर तन्हा हूँ, मुझे तो आज पता चला मैं किस कदर तन्हा हूँ, पीछे जब भी मुड़ कर देखा तो मेरा साया भी मुंह फेर लेता है। One thing I learned about life is you can be important to someone, but not at all the time. Remember that, my friends. तो ये था कुछ आखिरी शेयर्स आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में, और देखा जाए तो वक्त भी धीरे धीरे करीब आ रहे है। लेकिन उससे पहले ये अति सुंदर बयान एड फिल्म पॉकेट मार, एक बार फिर रवि साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में कंपोज बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और इस बार अल्फा से आनंद बख्शी जी का बंदा परवर मैं कहां।

uit de film Pocket Mare, Revy Saab, Dieke Beautiful, Awaaz Mee Tishundar Bayana, Shrotaan, Sun Rahe Thay. 8 minuten rah gaya hai, 7:30, 10:30 bajne mein, agla bayan uit de film Pocket Mare, aur is baar, fir Revy Saab ji ke ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनिए ये अति सुंदर बयान की आजा मुझे है तेरा इंतजार और वो भी चोरी से चुपके से

अन्य श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया एड फिल्म पॉकेट मार क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुन रहे थे ये अति सुंदर बयान कंपोज बाय महान संगीतकार जोड़ी द ग्रेट लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और अल्फाज था महान लेखक द ग्रेट आनंद बख्शी जी का और आवाज तो आप सुन रहे थे कोयल की तरह मधुर आवाज दवाने डोड़ी क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी का।

तक था आज का मेरे हिस्से का कार्यक्रम जो समाप्त होने का आया, क्योंकि वक्त भी धीरे धीरे दौड़ दौड़ कर आकर करीब पहुंच चुका है। पूरे 10:30 का वक्त हो चुका है यारो, तो वादा के मुताबिक मुझे आपसे भी इजाजत दे या शोमीर लेकर घर को जा रहा हूँ कि जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में, या शोमीर है कि मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले रविवार शाम 5 बजे मैं आप सभी से फिर मिलने वाला हूँ आवाज के जरिए सरनामी संगीत लेकर। Het eerste en het tweede uurtje, zoals altijd, eerste uurtje bij het Ghana, tweede uurtje kuch Sarnami Indian pop music. En uske baad, saat se takriban 8 baje tak, sirf nene superhit songs from the Bollywood film industry. तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना साथियों, मजे लेते रहना, एक से एक साथियों तैयार है आप सभी को पूरे रात सेवा करने के लिए। तो मुझे आप सभी इजाजत दे, जाते जाते कुछ ना कुछ गुनगुना देता हूँ आदत से जो मजबूर हूँ ना।

फूल को भी तुझको, रफी जी की, मोहम्मद रफी जी का ये सॉन्ग है। इस मूवी में हीरो था अजीत भाई, जो विलन के रोल अब लोग अब वो करते हैं। तो निकट इंद्रिय से स्टका ये सॉन्ग था। तो अगला गीत की ओर हम चल, ये गीत जो है नहीं किया तो करके देख, मेरे ख्याल से इस गीत को हम पहली बार सुन रहा हूं। नहीं किया तो करके देख, और ये है नाइटिंगेल, नहीं नहीं मुकेश का ये सॉन्ग है, करोड़ों का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ द मिलियन, माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है। और मूवी का नाम है चार दिल चार रहे, और 1900 का ये सॉन्ग है दोस्तों, आओ सुना जाए।

तो करके देख, ये तीतल तो बहुत मस्त है भैया। और ये है हाथ जाओ दीवाने आए, मूवी का नाम है सिंहापुर। All is gold for

हट जाओ और दीवाने आए, और कौन सा दीवाना आएंगे, हम आप लोग के लिए हम छोड़ देते हैं। और सुना जाए मैथिली मुकेश का ये सॉन्ग है।

0: और ऐसा ठुमक के मत चलो, ऐसा ठुमक के मत चलो कि आपको ठुमका लग जाए। तो ये गीत बहुत यानी कि मशहूर है दोस्तों, और ये है दिल तेरा दीवाना।
1: नजर बचा

फन हंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 6 2 2 6 9 8 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

मर के भी हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों की सेवा में विजयंती का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नई मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को हम बधाइयाँ पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं, हम आपको हृदय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं, हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस हाल में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं, और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को विदेश में सुन रहे हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं। सुनने वालों, अब से लेकर दिन में 12 बजे तक मैं आप सभी के सेवा करने वाली हूँ, इसी आशा के साथ कि जिस तरह से मैं अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश करूँगी, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। सुनने वालों, अभी आप सुन रहे थे ओपनिंग सिलेक्शन मेरे हिस्से के प्रोग्राम में। आप बुलाए और मैं ना आऊँ, ये तो हो ही नहीं सकता। सुनने वालों, हमेशा की तरह जब मैं अपने प्रोग्राम को शुरुआत करती हूँ तो एक भजन से मैं अपने प्रोग्राम को शुरुआत करती है यानी हूँ, और आज की इस हसीन रविवार की सुबह की प्रोग्राम में चलिए ये सुंदर सा भजन हम पेश करते हैं। आप सभी के वास्ते, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, जुबिन नौटियाल जी आपको सुनाने वाले हैं।

ये तो सच है सुनने वालों कि मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। और मैं क्यों ये कहती हूँ, क्योंकि दुर्गा माँ जो है वो बड़ा दयावान है। एक गीत हम पेश करते हैं उन सभी के वास्ते जो बीमार है या लाचार है, और ख़ास करके भी ये गीत को हम पेश करते हैं सोनी संतू जी के वास्ते जो बीमार है और आहिस्

अभी आप सुन रहे थे गिरना नहीं है गिरके, संभलना है जिंदगी, रुकने का नाम मौत है, चलना है जिंदगी। और ये गीत हमने पेश किए हैं उन सभी के वास्ते जो बीमार है या लाचार है, और ख़ास करके सोनी सांतू जी के वास्ते जो बीमार है और आहिस्ता आहिस्ता भी ठीक हो रहे हैं। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ।

फ्रॉम द मूवी खानदान से हमने पेश किए हैं कल चमन था आज एक सेहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। मैं किसे अपना कहूँ आज मेरा कोई नहीं।

द माइटी मुकेश और लता जी मिलकर सुना रहे थे मैं किसे अपना कहूँ आज मेरा कोई नहीं। छलिया है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आके ये पूछे।

फिल्म छलिया से भी आप सुन रहे थे मेरे टूटे हुए दिल से। कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, इसी फिल्म से एक और गीत हम पेश करने वाले हैं सुनने वालों। और गीत का बोल है, छलिया मेरा नाम, छलना मेरा काम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बस मेरा सलाम।

चलिया मेरा नाम, चलना मेरा काम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। सुनने वालों, एक बहुत सा सुंदर गीत हम पेश करने जा रहे हैं, वो भी देवी कारला छांगूर जी के वास्ते, जो सूरीनाम देश के रहने वाली है और उन्हें ये गीत बेहद पसंद है और मेरे प्रोग्राम उनको भी बेहद पसंद है। और ज़रा से मैं बतला दूँ कि ये कारला छांगूर कौन है। ये कारला छांगूर जी अशना छांगूर जी की माँ है। तो चलिए मिलकर सुनते हैं।

होता है सुनने वालों, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ऐसे मनमौजी को मुश्किल है समझाना। और ये गीत हमने पेश किए हैं देवी कारला छांगूर जी के वास्ते, जो सुरीनाम देश के रहने वाली है और जिन्हें ये गीत बेहद पसंद है और मेरे प्रोग्राम भी। तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की, कोई मेरा हो गया। लता जी आपको सुनाने वाले हैं और ये गीत हम पेश करते हैं स्वर्गीय रोशनी राधा किशुन जी के नाम पर, उनकी याद में, क्योंकि उन्हें ये गीत बेहद पसंद थी।

तेरा जलवा जिसने रेखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की कोई मेरा हो गया। और ये गीत हमने पेश किया है स्वर्गीय रोशनी राधा किशन जी की याद में। अय्या सुकु सुकु

0: मत है दोस्तों, यूं ही मुझसे मत डरो, मेरे भोले प्यार को ना जानी ना समझो। हाथों में जो हाथ है जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है कहानी ना समझो।
1: अय्या सुकू सुकू
0: अय्या करूं मैं क्या, सुकू सुकू खो गया दिल मेरा, सुकू सुकू

यया सुकु सुकु अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, एक बहुत सा सुंदर मैथिली हम चुन कर रखे हैं आप सभी के वास्ते। बताएंगे नहीं कि कौन सा मैथिली है, चलिए मिलकर सुनते हैं।

जो हम इस गीत में ढूंढते थे सुनने वालों, वो तो नहीं मिला, लेकिन जब मिलेगा तो हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। ए गुलबदन मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी प्रोफेसर।

गुलबदन ऐ गुलबदन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, सुनने वालों प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं और एक बहुत से सुंदर गीत हम चुन कर रखे हैं आप सभी के वास्ते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

तेजाब है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हमने पेश किया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। नमक हलाल है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं जवानी जानी मन।

आशा भोसले जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी नमक हलाल। कसम पैरा करने वाली है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं झूम झूम झूम बाबा।

अभी आप सुन रहे थे झूम झूम झूम बाबा, और झूम झूम झूम बाबा के बाद हम पेश करते हैं क्या, आप खुद सुन लीजिएगा।

द टाइटल फ्रॉम द मूवी डिस्को डांसर से हमने पेश किए हैं सुनने वालों, कविता कृष्णमूर्ति और सुदेश भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं। जरा सा हम देखे जुम्मा चुम्मा दे दे, आज तो जुम्मे का दिन नहीं है लेकिन अगर आप चुम्मा देना चाहते हैं तो ज़रूर दे दीजिएगा, ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े।

जुम्मा चुम्मा दे दे, और जुम्मा चुम्मा दे दे के बाद हम पेश करते हैं दे दे। क्या दे दे बताऊं? नहीं बताऊंगी।

बैंड वाले भाई साहब एक मिनट, क्या है कि हमारी मीना यहाँ कहीं ऊपर रहती है, हमें उसका पता मालूम नहीं, आप थोड़ा बाजा बजाएंगे हैं, पैसे बाद में। 1 2 3 4

दे प्यार दे अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों। शान है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से द टाइटल आप सुनेंगे।

जिन्होंने प्यार किया है, क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि आन बान और शान से जीना किसे कहते हैं, है ना।

करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से और मरते हैं भी शान से, ये तो सच है सुनने वालों। इसी फिल्म से एक और गीत हो जाए।

सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हैं हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, हमें आशा है कि प्रोग्राम आप लोगों को जरूर पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो आने वाले रविवार को हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, हमारी प्यार भरी राम राम नमस्कार, खुदा हाफिज। हैव अ नाइस वीकेंड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Till next time.

सुन रहे थे शिक्र होता है जब कयामत का, दवाई थी मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे, फ्रॉम द मूवी माय लव से हमने पेश किए हैं। रुक जा ऐ हवा लता जी आपको सुनाने वाले हैं, ये सुंदर सा गीत आप सभी के वास्ते हम पेश करते हैं, फ्रॉम द मूवी शागिर्द से आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे रुक जा ए हवा, हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते। इंसान का जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है। अगर दिल ही साफ नहीं तो चमकते चेहरे का कोई फायदा नहीं। फ्रॉम द मूवी आरसू से हम पेश करते हैं, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं और गीत का बोल है ए नर्क इसे मस्ताना।

अभी आप सुन रहे थे एनर्जी से मस्ताना, बस इतनी शिकायत है। एक बहुत सा सुंदर सॉन्ग हम चुनकर रखे हैं आप सभी के वास्ते, और लता जी आपको सुनाने वाले हैं मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है, ज़िंदगी सब्र करना सिखाती है, ज़िंदगी सब्र करना सिखाती है और सब्र जीना सिखाता है।

लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। जिंदगी तो हल्की फूकी सी है, जिंदगी तो हल्की फूकी सी है, सरा बोझ तो ख्वाहिशों का है। मैंने देखा तूने देखा फ्रॉम द मूवी दुश्मन से हम पेश करते हैं लता जी के साथ में किशोरदा आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे मैंने देखा तूने देखा, लता जी के साथ में किशोर दा आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी दुश्मन से हमने पेश किए हैं। कोशिश करना कि जिंदगी में वो शख्स आपको हमेशा मुस्कुराता हुआ मिले, जो आपको रोज आईने में दिखाई देता है। कान में झुमका, चाल में झुमका, फ्रॉम द मूवी सावन भादो से हम पेश करते हैं। मोहम्मद रफी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे कान में झुमका जाल में ठुमका लगे पशासी झटके। और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो ये है। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं सर आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी और वो ये है, इंसान तो हर जगह पैदा होते हैं मगर इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। कहाँ चल दिए इधर तो आओ, फ्रॉम द मूवी झुक गया आसमां से हम पेश करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे झुक गया आसमां से, कहाँ चल दिए इधर तो आओ मेरे दिल को न ठुकराओ, बोल सितमगर मान भी जाओ। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। हाँ, मैंने भी प्यार किया मुकेश जी के साथ में सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाने वाले हैं। लोग हमारी कदर उस वक्त नहीं करते जब हम अकेले हो, बल्कि उस वक्त करते हैं जब वो अकेले हो।

फ्रॉम द मूवी बुन जो बन गए मोती, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफी जी और सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाने वाले थे। प्रोग्राम को हम और आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, और मंजिल इंसान के हौसले आजमाती हैं, मंजिल इंसान की हौसले आजमाती हैं, किसी भी बात से हिम्मत ना हारना मेरे दोस्त, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती हैं। आप यहाँ आए किस लिए? किशोर दा आपको सुनाने वाले हैं साथ में आशा जी के साथ।

0: ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओहो काम तो बताइए,

0: तुम्हारा थाम लो बार बार पूछो ना दिल से भी काम लो
1: काम तो बताओ
0: काम सीधा साधा है
1: बोलो बोलो
0: आज लेना एक वादा है।

0: बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: अभी आप सुन रहे थे आप यहाँ आए किस लिए, आशा जी के साथ में किशोर दा आपको सुनाने वाले थे। सुनजा आ ठंडी हवा, थमजा ए काली घटा, आप सुनेंगे। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी, और वो ये है, कुछ मजबूत रिश्ते बड़ी खामोशी से बिखर जाते हैं, कुछ मजबूत रिश्ते बड़ी खामोशी से बिखर जाते हैं, कुछ लोग खुद टूट जाते हैं दूसरों की खुशी के लिए।

किशोरदा और लता जी आपको सुनाने वाले थे सुंजा आ ठंडी हवा फ्रॉम द मूवी हाथी मेरे साथी से हमने पेश किए हैं। कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आएगा। चलिए मिलकर सुनते हैं।

खाली जाम लिए बैठा हूँ, कब से इस मैखाने में कोई तो होगा मेरा साथी, कोई तो प्यास

कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आएगा, फ्रॉम द मूवी शराबी से हमने पेश किए हैं। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं। हमने जफा ना सीखी, फ्रॉम द मूवी जिंदगी से हम पेश करते हैं।

मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी जिंदगी से। हमने पेश किए हैं हमने जफा नसीखी, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा।